और दोस्तों प्यार में तो कभी कभी छोटी बात से बड़ी बात हो जाती है, आपको तो मालूम है। और कभी कभी प्यार में लोग भूल जाते हैं कि कौन से बात वो करते हैं, कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। तो ये सब बात है हमारे यारो, तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर, वो है ओ साथी रे।

0: क्या जीना है और रेडियो फाहुन के बिना कैसे रात कटेगी। तो हम चलते हैं एक रोमांटिक सॉन्ग किशोर जी के आवाज में।
1: हाँ
2: या चुप रहूं
1: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है
1: क्या है,

और दिल की टुकड़े टुकड़े करके और मुस्कुरा के चले गई। उसके बाद पे हम एक और गीत को सुनाते हैं।

0: हाथ डाल, ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास दादा दास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा आम।
1: अरे जाम, तो ये बात है दोस्तों, हम हैं जॉनी नंबर वन, और जॉनी नंबर वन जो है तो वो जरूर कुछ शायर के गीत आप लोग को सुनाएंगे, तो आओ सुना जाए। मैं शायर नहीं तो और क्या हूँ, फिल्म के नाम है बॉबी का ये सॉन्ग है।

और दोस्तों मैं भी शायर नहीं हूं, लेकिन हम कुछ आपको शायर के गीत को सुनाते हैं। और शायर के बाद हम क्या सुनाएंगे, हम चलते हैं, ये दुआ है मेरा रब से दुआ है दोस्तों, और जब रब से दुआ करेंगे तो आपको जरूर रब आपका दुआ जो है वो कबूल जरूर करेगी। तो फिल्म के नाम है सपना साजन की, अलका की और कुमार शानू का ये सॉन्ग है।

दोस्ती पसंद आए हमारे दोस्तों। तो बात क्या है, कैसे है, आपको हम जरूर सुनाएंगे। तो हमारे दोस्तों आज प्यार के मूड में फिर आ गए हैं और प्यार के मूड में आए हैं, तो प्यार तो करना चाहिए। तो हम चलते हैं बाला सुब्रमण्यम की ओर। ये भी बहुत लवली गीत गाया है दोस्तों, आओ एक और सुना जाए। और वो है बाला सुब्रमण्यम के आवाज में।

बाबुल सुप्रमण्यन के बाद तो हम चलते हैं और एक गीत के ओर, वो भी आज प्यार के मूड में है। कुमार शानू के ये गीत है, आओ प्यार करे, आप भी प्यार करो ना।

0: और चांद से पर्दा कीजिए कोई चुरा न ले और चेहरे के नूर हमारे ये। तो एक और हो जाए बाला सुपरमनियम का ओल्ड सॉन्ग
1: बहुत प्यार
0: और मैं भी
1: तुमको
0: बहुत प्यार करते हैं हम।

और बहुत प्यार तो करते हैं और सदा करते ही रहेंगे, ये हमारा वादा है। बहुत प्यार करेंगे और करते ही रहेंगे जब लेक सांसों में दम रहेगा दोस्तों। तो हम अगला गीत की ओर जाते हैं, अभी सांस लेने की फुर्सत तो नहीं है। अलका याग्निक सोनू निगम का ये सॉन्ग है।

और कहते हैं अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है और इसलिए कि तुम मेरी बाहों में हो, तो आप कितनी महान हैं कि सांस लेने की भी हमें फुर्सत नहीं है, क्योंकि तुम मेरी यादों में नहीं मेरी बाहों में हो। दोस्तों हम चलते हैं नाइटिंगेल और लता मंगेशकर और परमा श्री मोहम्मद रफी के एक मस्त भरी प्यार भरी गीत आतिश वेलन हील अवलीचे फन 1957 और फिल्म के नाम बा भाभी, और ये गीत हम चलाते हैं आप लोग सुनो।

छुपा कर मेरी आंखों को, तो पूछे कौन है और बता दीजिए नाना जी लता जी और प्रमा श्री मोहम्मद रफी का ये गाया हुआ सॉन्ग है। और हम चलते हैं कभी कभी जब प्यार हो जाता है तो लोग खोजते हैं, क्या खोजते हैं, लोग खोजते हैं कि हम कहां अपना प्यार को ढूंढू और प्यार में लोग क्या क्या देखते हैं। और ये गीत है, रब को भी लोग देख देते हैं प्यार में हमारे।

और दोस्तों हम चलते हैं एक ओल्ड इन गोल का पुराना गीत है, वो है फिल्म का नाम है मेरे ख्याल से ये कुछ और फिल्म का नाम है तुम अकेले तो कभी बाग में मत जाया कर आओ प्यार करिए। मूवी का नाम है आओ प्यार करे, ये रजत खन्ना का ये एक फिल्म है और ये गीत आओ सुना जाए मिलकर।

0: और तू अकेले कभी भाग में जया ना करो दोस्तों, तो बड़ी यालूट से भैया क्या क्या होता है।
1: फ्रॉम द मूवी दुनिया से हम पेश करते हैं सुनने वालों, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं, चलिए मिलकर सुनते हैं।

फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, तुमने कभी प्यार ना किया, तुमने इंतजार ना किया। बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, लता जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी बैजू भौरा।

अभी आप सुन रहे थे बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना। लता जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी बैजू भौरा से, तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना। लता जी फ्रॉम द मूवी अनारी से।

लता जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे तेरा जाना, फ्रॉम द मूवी अनारी से हमने पेश किए हैं मेहताब तेरा चेहरा। द माइटी मुकेश और लता जी की आवाज में आप सुनेंगे।

आशिक है फिल्म का नाम लता जी के साथ मेरा माइटी मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे। देखो देखो जी, सोचो जी, कुछ समझो जी, लता जी की आवाज़ में चलिए मिलकर सुनते हैं।

0: देखो देखो जी, अभी आप सुन रहे थे लता जी की आवाज़ में झूमता मौसम मस्त महीना मन्ना दी के साथ में। लता जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी उजाला।
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।

अभी आप सुन रहे थे झूमता मौसम मस्त महीना, लता जी के साथ में मन्ना दे जी आपको भी सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी उजाला से हमने पेश किए हैं। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं मेरे देश में पवन चले पूर्वाई।

मेरे देश में पवन चले पूर्वाई मोहम्मद रफी जी भी आपको सुनाने वाले थे। रमैया वस्तावैया लता जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी श्री 420।

श्री 420 है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से हमने पेश किया है रमैया वस्तावैया मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले थे। लता मंगेशकर जी के साथ में मोहम्मद रफ़ी जी आपको मिलकर सुनाएंगे कितना प्यारा वादा है इन मतवाली आँखों का।

मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में लता जी मिलकर सुना रहे थे आप सभी को। कितना प्यारा वादा है इन मतवाली आँखों का। तलत महमूद जी आपको प्रोग्राम में सुनाने वाले हैं जिंदगी देने वाले सुन।

जिंदगी देने वाले सुन भी आप सुन रहे थे, तलत महमूद आपको सुनाने वाले थे। मधुमती है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से मोहम्मद रफी जी की आवाज़ में पेश करते हैं टूटे हुए ख्वाबों ने।

मोहम्मद रफी जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे। टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है। तलत महमूद जी एक बार फिर से प्रोग्राम में आ रहे हैं। सुनने वालों, जाए तो जाए कहाँ।

0: Al 32 keer de beste mobiele provider.
1: अभी आप सुन रहे थे जाए तो जाए कहाँ, तलत महमूद जी आपको सुनाने वाले थे। महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में आप सुनेंगे, बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली।

द टाइटल फ्रॉम द मूवी बहारे फिर भी आएगी से भी आप सुन रहे थे, महेंद्र कपूर जी आपको सुना रहे थे। कोई होता जिसको हम अपना कहते यारो,

होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो। अभी आप सुन रहे थे किशोर दा की आवाज में फ्रॉम द मूवी मेरे अपने। लता जी आपको सुनाने वाले हैं दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया, दुनिया की आंधियों से भला ये बुझेगा क्या।

में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया दुनिया की आंधियों से भला, ये पूछेगा कि अभी आप सुन रहे थे लता जी की आवाज में। कल आज और कल है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं भौरे की गुंजन।

अभी आप सुन रहे थे भौरे की गुंजन है मेरा दिल, साथ ही है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है।

माई थी मुकेश और सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे मेरा प्यार भी तू है ये बहार भी तू है फ्रॉम द मूवी साथी से हमने पेश किए हैं। जवानी दीवानी है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं किशोर डा की आवाज़ में सामने ये कौन आया दिल में हुई हलचल।

किशोर ने आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी जवानी दीवानी। चलादा यानी गीत का बोल है चला जाता हूँ, किशोर ने आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी मेरे जीवन साथी।

चला जाता हूँ किसी के धुन में अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी मेरे जीवन साथी से हमने पेश किए हैं कांटा लगा। लता जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी समाधि से।

बंगले के पीछे तेरी बेड़ी के नीचे भी आप सुन रहे थे सुनने वालों, सरासा हम देखे तो प्रोग्राम को हम आगे में जारी करने वाले हैं।

0: हे मानव, अब तू इस अमृत वाणी की मसाल लेकर अपने भीतर और बाहर के अंधकार से निकल, क्योंकि ये अमृत वाणी तेरा कवच भी है और शस्त्र भी। इस अमृत वाणी की मसाल अपने युग के धृतराष्ट्रों, दुर्योधनों और शकुनियों को पहचानने में तेरी सहायता करेगी। इस मसाल के प्रकाश में तू ये देख सकेगा कि अन्याय आज भी उतना ही ढीठ है जितना प्राचीन हस्तिनापुर में था। तू देख सकेगा कि धर्म ने अधर्म की चादर ओढ़ रखी है। हे मानव, तू इनसे हटकर अपना रास्ता बना, नहीं तो ये तुझे भी अपने अंधकार में घसीट लेंगे। तू प्रकाश का उत्तराधिकारी बन, तू न्याय का उत्तराधिकारी बन, तू धर्म का उत्तराधिकारी बन और अपने भीतर की कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बना। यही मोक्ष है, यही अमृत वाणी है।
1: मैं आपका गोपाल परदेसी बाबा, भगवान का शुभ हाथ। सज्जनों, भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता में इस श्लोक अथवा भोग जगत के संबंध में तीन शब्दों का प्रयोग किया है, असुख, दुखालय एवं दुखयोनि। इन तीन शब्दों का प्रयोग किया है परमात्मा ने। सज्जनों, यहां वास्तविक सुख है ही नहीं। सज्जनों, वास्तविक सुख है ही नहीं, ये दुखालय है और दुखों की उत्पत्ति का क्षेत्र है। ऐसे भोग जगत में हम सुख ढूंढ रहे हैं और जैसे तपती हुई बालू की लहरों पर सूर्य की किरणों पड़ने से प्यासे हरिन जल का भरम हो जाता है, उसी प्रकार हमें भी भोगों में सुख दिखाई देता है, पर जैसे हरिन वहां पहुंचने पर विशेष संताप के सिवा और कुछ नहीं पाता, उसी प्रकार जगत के अनुकूल भोगों के प्राप्त होने पर दूर से दिखाई देने वाले सुख नष्ट हो जाते हैं, बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं, और कुछ ही समय बाद विशेष संताप की अनुभूति होती है। इस तरह का तजुर्बा आपको हुआ हो शायद। भगवान ने इसलिए कहा है, सुख चाहते हो तो मां भजस्व, मुझे भजो, सुख रूप एकमात्र भगवान है। भगवान से रहित जगत सर्वत्र दुखमय है। वास्तव में साधकों की दृष्टि से दुख भी भगवान के ही प्रसाद है। दुख को भगवान के प्रसाद मानकर स्वीकार कर लेना, दुख बहुत कम महसूस होगा। कर्म जगत की अवस्था के अनुसार दुख बुरे कर्म का फल है, ये आप ही के कर्म का फल है।

जैसा किया है वैसा ही भरना पड़ेगा। वच्य जायत सालिय मुतन ओक्षतन, और दुख में उस बुरे कर्म का नाश होता है। दुख में भगवान की समृद्धि होती है। दुख से मनुष्य के मन में वैराग्य होता है, और दुख भगवान की ओर बढ़ने में सहायता करता है। तो दुख मिलने पर हम भगवान की ओर दौड़ते हैं, ये भी एक बहुत अच्छी कर्म है। श्री भगवत गीता में कुंती देवी ने अपने सगे भतीजे सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण से वरदान मांगा था कि आप हमें बार बार विपत्ति दिया करें। बार बार विपत्ति से समृद्धि रूप से आप मिलते हैं, और आपका मिलना मोक्षदायक होता है। आप भी ये बात समझ लें, आप पर जो विपत्ति आई है जगत की दृष्टि से अवश्य ही वो सर्वथा हर हाल में इच्छा नहीं की जा सकती, पर भगवान का मंगलमय विधान कभी अमंगलकारी हो ही नहीं सकता है। सज्जनों, जो भी विपत्ति आपके ऊपर है उसे स्वीकार करें, भगवान का नाम सुमिरन करते रहो। छोटे बच्चे के किसी अंग का ऑपरेशन होने पर उसे अंग का काटना समझकर रोता है। ऑपरेशन करने वाले सर्जन के मन में उसके रोग नाश का मतलब है, और वो उसके हित के लिए ही ऑपरेशन करता है। घर वाले जो समझदार हैं वे भी ऑपरेशन को दुख नहीं मानते, सुख मांगते हैं, सुख जानते हैं। वे सोचते हैं कि रोग का नाश हो रहा है, किंतु यहां के सर्जन से भूल हो सकती है, उसके मतलब में भी प्रमाद हो सकता है। पर सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ हमारे परम सुखदाता प्यारे भगवान हमारे लिए जो मंगल विधान करते हैं, वो चाहे दुख हो, दरिद्र हो, रोग हो या मृत्यु हो, अवश्य ही हमारे आत्मा के लिए वो कल्याणकारी होता है। इसमें हमें विश्वास रखना चाहिए, और यही सत्य है, यही जीवन का सत्य है। आप भगवान पर विश्वास करते हैं इसलिए मैं ऐसा बोल गया, नहीं तो किसी भी पत्ती में पड़े हुए आदमी को उसके साथ सुहानुभूति पूर्ण रोने कल्पने की बात ही बोली या लिखी जाती है, हालांकि वो वास्तव में है धोखा ही। सज्जनों, आप इस सत्य को पहचानिए, और भगवान के प्रति एक मंगल विधान में उनका कृपा पूर्ण कार्य और प्रेम देखकर प्रसन्न होते रहिए। आत्मा में न किसी वस्तु का ग्रहण है, न त्याग, न संयोग है, न वियोग, न मान है, न अपमान, न निरोगता है, न रोग, न जन्म है और न मृत्यु। इसमें मोहित होना और उसके संपर्क में आकर दुखी सुखी होना वास्तव में अज्ञान है, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। सज्जनों, जगत तो एक मुसाफिर खाना है और आने जाने का नगर है। ये आने जाने के रीति जगत से कभी नहीं मिट सकता, क्योंकि इसी यात्रा को लेकर ही जगत है। सज्जनों, जन्म मृत्यु तो ये जगत की रीति है, और ये आप खूब ठीक से जानते हो, फिर भी टाल मटोल करते हो और दुखी हो जाते हो। और ये सारे कार्य में समान भाव से भरे हुए एक भगवान है, वो ही परम सत्य है।

भगवान ही एक सत्य है इस जगत में, विश्व में, ब्रह्मांड में। आ उसी सत्य में विश्वास करें, केवल उन्हीं से संबंध रखकर हर अवस्था में प्रसन्न रहना चाहिए। करके तो देखो, और बोलना सिर्फ नहीं, हम तो भगवान में विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं। ये बोलते बोलते आपकी उमरिया बीत गई। अरे जो बाकी है उस उमरिया को तो आप सही तरीका से बिताओ, विश्वास करो परमात्मा। और बोलना नहीं सिर्फ, बोलने से क्या फायदा। तुम अपने आप को उल्लू बना रहे हो, दूसरों को भी कोशिश कर रहे हो उल्लू बनाने को, विशेष करके परमात्मा को भी। इसीलिए तो आप अशांत हैं। परमात्मा वहां है जहां सत्य मन से पूजा पाठ भजन कीर्तन होता हो, घर गृहस्थ में प्रेम हो, छल कपट नहीं है। उसे बैकुंठ कहते हैं सज्जनों, उसी को बैकुंठ कहते हैं। वहीं परमात्मा रहती है, इस बात पर आप विश्वास करें। और अंधा वो नहीं जिसकी आंखें नहीं, अंधा वो है जो अपने दोषों को देखता नहीं, जो अपने कसूर को, अपने पाप को, अपने अपराध को देखता नहीं। प्रेम मनुष्य को अपनी ओर खींचने वाली चुंबक यानी मैग्नेट है सज्जनों। सत्य बराबर धर्म नहीं, झूठ बराबर पाप। जिनके हृदय सत्य है तिनके हृदय प्रभु आप। मैं बार बार ये कहता हूं कि प्रभु आप मुझे मिलो या ना मिलो, ये तो आपकी इच्छा है भगवान, मगर मुझे उनसे मिलवा दो जो आपको मिल चुके हैं। प्यारे प्यारे सज्जनों, जो बात मैंने आपसे बतलाए उस पर ध्यान करके जरूर अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। मिलेंगे फिर अगर रहा जिंदगी।

खुल जाने से ये खाता घट जाता है और इस कलयुगी समय में मित्रों हम सबको आपस में मिलकर रहना चाहिए।

यानी बाढ़, तूफान, बीमारी इत्यादि होते ही रहते हैं, तो हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए। कहे जाते हैं ना, मनुर्भवः।

माता पिता चरणम नमः विद्या प्रदायकम् दीक्षम मंत्रम गुरु वंदे वंदे गुरु पद पुनम पुनम।

समाज सेवा में मैं हूं संजय और आपके साथ जुड़ गए हैं। सभी जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना किया जाता है कि उनके स्वास्थ्य में परिवर्तन आए। सभी जिनके घर पे एक नया शिशु ने जन्म लिया है, नया परिवार जो आए हैं परिवार में, तो आप सभी को हार्दिक से बधाई दिया जाता है। सभी जो अपने काम की तैयारी के ओर बढ़ रहे, तो आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत किया जाता है। और ये भूलना मत कि महात्मा गांधी जी ने कौन सा संदेश रखा था कि हम ये ना सोचे कि हमारे देश हमारे लिए क्या कर सकते हैं, पर हम जरूर ये सोचे कि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ। सभी जो इस समय तैयारी कर रहे हैं स्कूल यानी कि अपना ज्ञान के ओर बढ़ने के लिए, तो माँ सरस्वती को आपको भूलना नहीं चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जरूर माँ सरस्वती का ध्यान दे करके और निकलना।

और जो सफर पे आए हैं हमारे देश में, तो आपको एक फाइन वैकेंसी टू हॉलैंड्स। हॉलैंड एक सुंदर देश है जहाँ पर लगभग 18 मिलियन व्यक्ति रहते हैं और यहाँ कुछ 23 मिलियन साइकिलों भी होते हैं। हर एक घर में साइकिल जरूर होते हैं। तो अगर आप हॉलैंड में आए हैं तो जरूर आप कुछ उसके बारे में यानी कि थोड़ा से शेयर करके जाना। इसी प्रकार से अन्य शहरों जैसे हीथोरन है जो बनाया गया है, जहां पर रास्ते नहीं पर पानी के माध्यम से लोग अपने कार्य काम करते हैं, तो वो ऐसा स्थानों को जरूर देख के जाना।

मत भूलना, हम हिंदुओं के लिए जो कुछ 200,000 के तादाद में हॉलैंड में रहते हैं, तो तनहाक जैसा शहर में 3-4 मंदिरों है। अलमेर में मंदिर है और विष्णु मंदिर के नाम से, गोल्डन टेंपल के नाम से बनाया गया है एक इतना सुंदर मंदिर दनहाक में, जो कि जा कर के राधे कृष्ण मंदिर, देव मंदिर और इसी प्रकार से और भी मंदिरों है। रोटरडम शहर में शिव मंदिर, राम मंदिर और भी मंदिरों जो वहाँ पर उपस्थित है। इसी तरह से जाकर के अरनहेम में भी मंदिर आप पाएंगे। वहाँ हर रविवार को 2 से 5 बजे तक मंदिर लगाया जाता है। दनहाक में जो कि जाकर के राधे कृष्ण मंदिर जो 6 से और 8 बजे तक लगाया जाता है। दनहाक में खासलान देव मंदिर को, जहां हर रविवार को 2 बजे से कार्यक्रम 5 बजे तक लगता है। इसी प्रकार से अम्स्टरडम शहर में द राधे कृष्ण मंदिर जो उस दौरप में है, और वो भी सुबह में हर रविवार को 11 बजे से 1 बजे तक हर रविवार को लगाया जाता है। सभी सेवकों जो मंदिर में सहयोग देते हैं,

इसी प्रकार से हॉलैंड में कितने स्थानों हो जो कि आप देख सकते हैं हेर फिल बसिंस आर द हेडन इन नीदरलैंड। सभी को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए और आप सुन रहे हैं फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो जो इंटरनेट द्वारा दुनिया के हर एक प्रांत में सुना जा सकता है।

कहते हैं कि दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाए, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देते हैं। तो पहला भजन की ओर हम बढ़ेंगे आपके साथ जुड़े हुए।

गीत तेरे लिए राधा, ये सुंदर सा गीत का जो 2025 में गाए गए है स्वस्ति मेहुल के आवाज में, सुंदर सा गीत को और सुनते हुए हम जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, और मीना जी ने एक संदेश को और रखे हैं व्हाट्सएप पे, और संदेश इस तरह से है कि कभी सोचा है कि हाथ के लकीरों भी कितना अजीब है, कमबख्त मुट्ठी में है पर काबू में नहीं रहती है।

ईश्वर की शरण में निस्वार्थ जाइए, वो सब जानते हैं आपको क्या चाहिए।

सुनने वालों, ये जरूर कहना चाहूँगा कि भाग्य से जितना ही अधिक उम्मीद रखेंगे वे उतना ही निराश करेगा। कर्म में विश्वास रखो, कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिलेगा।

एक ऐसा दिन बनाइए, अपना मित्र को ऐसा सोचिए कि रघुपति कीन ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भारत संभाई। कुछ ऐसा करके दिखाइए कि जैसे हनुमान जी का प्रेम श्री राम जी के साथ।

कि अनुशासन कठिन जरूर लगता है, पर आदत बन जाए तो सफलता की गारंटी देता है।

किसी संत ने बड़ा अच्छा से लिखा है कि 100 काम छोड़ कर के भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़ कर के स्नान करना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़ कर के दान करना चाहिए और 1,00,00,000 काम छोड़ कर के भगवान का स्मरण करना चाहिए।

समय अवस्मरण, सात समय अवस्मरण दुनिया की सबसे अच्छे भेंट है। सुप्रभात कहते हुए मैं अगला भजन की ओर बढ़ेंगे।

प्रकाश गांधी के आवाज में ये सुंदर सा गीत कनक भवन के अंतर्गत में हम सुने। सुनने वालों, अगर आप राम मंदिर के दर्शन करने को जाए तो कनक भवन भूलना नहीं, क्योंकि उसका वृतांत तो बड़ा कठिन है। पुराने समय के बात है, अयोध्या में कोई ऐसा स्थान था जहां लोग बहुत कम जाया करते थे। मंदिर कनक भवन जो थे उसका कर्ता धर्ता श्री राम प्रसाद जी कोई प्रकार से, और जो आरती और जो चढ़ाव आता था मंदिर में उसी से सभी संतों और वहां का सेवकों का खाना पीना और होते थे। और ऐसा हुआ कि एक दिन मंदिर दर्शन करने को कोई नहीं आए, वहाँ कोई प्रकार से चढ़ाव नहीं मिला था। कोई आए ही नहीं तो चढ़ाव मिलेगा कैसे? पर सभी सेवकों और संतों जो मंदिर से है और उनका तो व्यवस्था करना ही पड़ेगा। तो राम प्रसाद क्या कहते हैं अपने एक चेले से कि जो जहाँ से रोज का और राशन लाया जाता था, एक बनिया जिनका नाम पलटू बनिया था, और कहते हैं अपने चेलों से जाकर के वहाँ पलटू बनिया के पास इस बात को कहो कि आज कोई प्रकार से चढ़ाव नहीं मिला है, हमें कुछ राशन मिल जाए तो हम बाद में जो पैसा मिलेगा उन्हें भर देंगे। पर पलटू बनिया में ये था कि हम किसी को कर्ज नहीं देते, कर्जे पे नहीं देते हैं। राम प्रसाद जी के जो चेले थे बहुत गुजारिश किए, फिर भी पलटू बनिया ने कहा कि कर्ज में हम कुछ नहीं देते हैं। राम प्रसाद जी के चेलो वापस जा कर के राम प्रसाद जी से ये संदेश सुनाते हैं कि पलटू बनिया ने कहे कि करस पे हम कुछ नहीं देते हैं, जो लेना है तो नगद ले लो। राम प्रसाद जी बस यही कहते हैं जो भगवान की इच्छा। और इसी प्रकार से उस दिन संतों और सेवकों बस जल पान करके और सो गए। पर कनक भवन में एक नियम था, सभी जो रात को राम जी के आगे बैठ करके और उन्हें भजन को सुनाते हैं, सभी संतों और सेवकों सो गए, पर राम प्रसाद जी रोज का कार्य अपने करने लगा। जा करके राम जी के पास बैठ करके और भजन करने लगा। और इसी प्रकार से जब अपना कार्य कर चुके तो रात को एक चादर उड़ा दिया जाता था, और भगवान को चादर उड़ा करके राम प्रसाद जी भी सोने को चले गए। रात व्यतीत होता है और कुछ रात के सुबह होने को आ रहे हैं। पलटू बनिया के दरवाजा पे ठोका जा रहा है। कहा जाता है कि पलटू बनिया दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। और इस बात को सुन करके पलटू बनिया के लगा कि कुछ बच्चे परेशान कर रहे हैं। मन में यही आशा लेकर के पलटू बनिया निकल रहे हैं कि अभी डांटूंगा ये बच्चों को, इतना रात हो गए हैं और अभी बाहर खेल रहे हैं। जैसे पलटू बनिया दरवाजा खोलते हैं तो वहां देखते हैं चार चार सुंदर सुंदर युवा यानी कि बच्चे दरवाजा पे खड़े हैं।
और कहते हैं दरवाजा खोल, और जैसे दरवाजा खोलते हैं पलटू बनिया सभी अंदर आ जाते हैं। बच्चे इतना सुंदर था पलटू बनिया, उसे देखते देखते मोहित हो गए। और बच्चे क्या कहते हैं पलटू बनिया से कि आज तुमने राशन राम प्रसाद जी के नहीं दिए हैं, देखो एक चादर जो चारों बच्चे ने ओढ़े थे। और वो पलटू बनिया के इशारा से दिखाते हैं कि देखो ये चादर में कुछ और पैसे बांधे हुए हैं, इसे लेकर के और आप जरूर से जरूर राशन राम प्रसाद जी के पास भेज दीजिए। पलटू बनिया देखते हैं चादर एक कोने में गांठ बना करके ढेर सारे पैसे बांधे हुए थे। पलटू बनिया देख करके हैरान हो गए और कहते इतना में तो हम साल भर राशन नहीं दे पाएंगे, ये तो बहुत सा पैसा है। पर वो बच्चे क्या कहते हैं, कहने के तात्पर्य ये है कि पलटू बनिया का दुकान बस एक छोटा का किराने के दुकान थे और उनमें। और तभी बच्चे कहते हैं कि आप इतना हैरान मत हो, आपको बस रोज थोड़ा सा जितना राम प्रसाद जी के इच्छा है उतना ही राशन बस दुकान पे भेजना है। इसी बात पे और बच्चों फिर चले गए। अब सुबह जब होते हैं तो पलटू बनिया अपना गाड़ी में सामान भर करके और आकर के राम प्रसाद जी के पास पहुंचते हैं। राम प्रसाद जी देखते हैं पलटू बनिया ढेर सारे सामान राशन आदि लेकर के पहुंचे और वहां जाकर के राम प्रसाद जी के पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आपने रात में क्यों बच्चों को भेजे, हमें तो क्षमा कर दो, हमने गलती कर दिए हैं और आज से आपके लिए और रोज राशन पहुंचा दिया जाएगा। राम प्रसाद जी कुछ समझा नहीं, उन्होंने कहा मैं तो कोई बच्चों को नहीं भेजा था। पलटू बनिया ने तभी सारा कथा का वृतांत राम प्रसाद जी को और सुनाते हैं। राम प्रसाद जी ये कथा को सुन करके और समझ गए और जाते हैं और भगवान राम जी के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि मैं सदैव आपके सेवा में लगे हूँ, पर आज आपने ये संदेश हमें रखे कि आज हमें आप दर्शन नहीं दिए और ये पलटू बनिया का दर्शन दे करके भगवान के चरणों में गिर के रोने लगे। और होता है क्या, पलटू बनिया भी वहाँ जा कर के इस बात को समझ गए कि जो चार बच्चे के रूप थे वो स्वयं भगवान अपने भाइयों के साथ वहाँ जा कर के उपस्थित हुए थे। दोनों साथ मिल कर के और रोते रोते भगवान के चरणों में। और तभी राम प्रसाद जी जो बेहोश हो गए यानी कि मूर्छित हो गए और उनको स्वयं माँ सीता ने अपने ओर से उनके टीका लगाए और जा कर के राम प्रसाद जी बहुत प्रसन्न हुआ और आज तक कनक भवन का टीका बहुत मान्यवर कहा जाता है। कहा जाता है कि माँ सीता जी का आशीर्वाद है। तो सुन वालों, अगर आप राम जी का दर्शन करने को जाए अयोध्या में तो ना सिर्फ राम जी का दर्शन पर कनक भवन, हनुमान बगड़ और इसी प्रकार से जमुना जी के आरती, भरत जी जो गुफा में और 14 बरस बैठ करके और तपस्या किया था, वो स्थान जहाँ पर अयोध्या में
हनुमान जी जब पहाड़ लेकर मौस जीवन जो लेकर के जा रहे थे लक्ष्मण जी के अंतर्गत, और भरत जी ने बाण मारे थे, सभी स्थानों को आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार से सूर्य मंदिर जो बनाया गया है, जरूर देख के आना।

0: एक बार प्रेम से बोलिए श्री सूर्य भगवान
1: की जय।
0: ये श्री सूर्य भगवान की तपोभूमि है, ये पौराणिक स्थल है, मान्यता प्राप्त कुंड है। ये भूमि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये त्री सूर्य कुंड उस समय का है जिस समय त्रेता युग में राम जी का जन्म था। रामायण में लिखा हुआ है बालकांड में, मास दिवस का दिवस है वो मरम न जाना कोई, रवि समेत रथ को निशा को निधो। जिस समय त्रेता युग में त्रि अयोध्या जी में भगवान प्रभु राम जी का जन्म था, तो राम जी के जन्मोत्सव में 33 कोटि देवता रहे थे आकाश मार्ग से। त्री सूर्य भगवान का रथ आ रहा था, त्री सूर्य भगवान का रथ सभी देवताओं के रथ के आगे चल रहा था प्रकाश करते हुए, क्योंकि 33 कोटि देवता थे, प्रकाश की विशेष हो सकता थी। त्री सूर्य भगवान ने रथ को आकाश मार्ग में रोक दिया, राम जी के जन्मोत्सव में खुश होकर के एक महीने तक रखा दिया, क्योंकि भगवान प्रभु राम जी के जन्मोत्सव में 33 कोटि देवता थे, मनुष्यों को कोई गणना कितने मनुष्य थे। राम जन्म समय जाने ब्रह्मादि पधारे, धाये सूर्य चढ़ विमान देव वधू करत गान, शीतल सुगंध पानी धवल नि उधारे। भगवान राम संसार के जितने देवता थे सभी अयोध्यापुरी को आए हुए थे, देवियां मंगल गान को गाती थी और माँ कर्ज जी का जल दूध के सामान निर्मल उज्जवल धारा बहने लगी। वेद मंत्र शोध शोध कर पुराण सब संत और संत को भेद को बताते हैं। ज्योतिषी लोग विद्वान लोग वेदों में गणना करते हैं, कहते संसार के पालनहार का अवतार हो गया है, इसलिए सूर्य भगवान ने एक महीने का दिन कर दिया कि भगवान राम जी की 6 दिन की छठी हो जाए, 12 दिन की वरही हो जाए, एक महीने के शुद्धिकरण हो जाए, जो हिंदू में नाम रखा जाता है। 1 मास का 1 दिन कर दिया, किसी को नहीं मालूम 1 मास का 1 दिन का। इधर कलयुग में अयोध्या के महाराजा दर्शन पैदा हुए श्री सूर्यवंशी अयोध्या नरेश, उन्हीं के द्वारा इसका निर्माण हुआ। प्राचीन समय में जंगल था, इसी के जल से राजा का कुछ दूर हुआ, शिकार को नहीं किए चले गए स्थान अयोध्यापुरी। रात्रि में सूर्य भगवान ने सपना दिया, राजन मेरा सूर्यकुंड धाम इसको खुदवाइए बनवाइए, तुम्हारा कल्याण होगा। महाराजा दर्शन ने फौड़ा चलाया तो 7 घोड़े के रथ पर सूर्य भगवान की मूर्ति प्राप्त हुई, जो मंदिर में स्थापित के दर्शन होता है, इसी से इसको श्री सूर्यकुंड कहा जाता है। शंकर जी के नीचे खजाना निकला, उसी खजाने से राजा ने श्री सूर्यकुंड का निर्माण कराया। अयोध्या का महात्म देखा गया तो मुख्य रूप से अयोध्या 14 कोष की मानी जाती है। श्री अयोध्या में 360 मंदिर पाए, सभी मंदिरों की मिट्टी से राजा ने वो बेदी बनाई। नीचे आरती घाट जिस पर आरती होती घंटा बना हुआ है, 11,000 मन का यज्ञ करवा करके 360 का जल इस कुंड में डाला गया। इसका महात्म है, जो भी यात्रीगण यहाँ आते हैं त्री सूर्य कुंड धाम को प्रणाम करते हैं, 7 बार जल को मस्तक पर लगाते हैं, त्री सूर्य भगवान का दर्शन करते हैं, सो 360 यात्रा का फल मिलता है। दोनों कुंड अगल कुंड ईश्वर कुंड हनुमान कुंड सुग्रीव कुंड खरगा कुंड दुर्गा कुंड काल कुंड सतीश कुंड ऋषि कुंड मणि कुंड श्याम कुंड वेद कुंड विद्या कुंड सीता कुंड अग्न कुंड ईश्वर कुंड हनुमान कुंड सुग्रीव कुंड इतना लेकर के 360 का मस्तक। तीर्थों में 2 स्थान पौराणिक हैं। सबसे प्रथम माँ सरयू जी जो भगवान राम जी के जन्म के 6 लाख वर्ष पहले से बह रही है, श्री गुरुवर्षी जी महाराज की देन है, जो कि अयोध्या में सरयू जी विद्वान। रामायण में दोनों का वर्णन है, बालकांड में सूर्य कुंड का वर्णन लिखा हुआ है, उत्तरकांड में माँ सरयू जी का वर्णन है, जो भगवान राम जी ने अपने मुखारविंदों से माँ श्री सरयू जी का वर्णन किया। श्री अवधपुरी समझ लेते हैं आप लोग ना, श्री अवधपुरी मम पुरी सुहावनी, उत्तर ऋषि सरयू बहे पावनी, जो मंजई सो विने प्रयासा, मम समीप नरे पावही वासा, अति प्रिय मोहि यहाँ की वासे, मम धाम रापुरी सुख राशे। बोले मुनि सुनि प्रभु की वाणी, धन्य अवध जहि राम बखानी, अवध शरीक प्रिय नहीं और कोई, जाने यह प्रसंग कोई कोई, यद्यपि है वैकुंठ बखानी। अति सुंदर है क्योंकि मेरी अयोध्यापुरी के उत्तर दिशा में सलिला सरिता पावनी वशिष्ठ पुत्री नेत्र जात्री सरयू कुमारी की बहती कैप नाम है माँ सरयू जी का, जो कि पाप को जलाकर भस्म कर देती हैं। जो भी मनुष्य श्री सरयू जी में स्नान करते हैं, श्री सरयू जल को मस्तक पर लगाते हैं एवं सरयू जल को चरणामृत लेते हैं, सो मनुष्य तपस्या के बिना ही मेरे हृदय में निवास करते हैं। मेरी अयोध्यापुरी में क्षण मात्र भी बात करने वाले प्राणी सो मुझे मेरे लिए प्राणों के समान प्रिय हैं। मेरी अयोध्यापुरी सुखों का खजाना है, सुखों का भंडार है, अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पदार्थों को प्रदान करने वाली है, धन धान्य संतान आदि को बढ़ाने वाली है। श्री गुरुवर्षि जी महाराज भगवान प्रभु राम जी के मुखारविंदों से वर्णन सुन करके कहते हैं, धन्य अयोध्यापुरी धन्य है, किसी स्वयं नारायण ने अपने मुखारविंदों से प्रशंसा की है, अयोध्या साक्षात साकेत धाम है, वैकुंठपुरी के समान है, सभी तीर्थों का मस्तक है। 7 पुरियां हैं, सबसे ऊंचा स्थान श्री अयोध्यापुरी जी का। हाथ जोड़िए सभी लोग, हाथ जोड़िए, हाथ जोड़िए, बोलिए राम जी के नाम, भरत जी के नाम, लक्ष्मण जी के नाम, शत्रुघ्न जी के नाम, जानकी जी माता, पांचों देवता, भोग लगे, सूर्य सूर्य भगवान आपके पुरी में यात्रा किया, अयोध्या यात्रा पूर्ण करना, शरीर को कल्याण करना, धर्मपुत्र लक्ष्मी को अपना नाम कह करके प्रणाम कर दिया।

ये सुंदर सा गीत जो सूर्य देव के अंतर्गत हम सब सुने, और उससे पहले जो आचार्य सूर्य कुंड के और अयोध्या से जो अपना संदेश को रखे थे, तो जरूर आप अगर अयोध्या जाए तो वहाँ पर वो कुंड का दर्शन करके, और अपने जैसे कि आचार्य जी ने कहा है कि 7 बार उस जल से अपने माथे से और टप करे। सुनने वालों, मैं आपके सेवक संजय कुछ देर तक आपके साथ और व्यतीत करने वाले हैं, पर अब कार्यक्रम का मोर कुछ और दिशा के ओर ले जाने को कोशिश करेंगे। हम न्यूज और कमर्शियल के ओर बढ़ेंगे और उसके बाद में हम आपके साथ फिर जुड़ जाएंगे।

सुनो लो ये सुंदर सा गीत का मांग करने वाले श्रीमान रबीन जी जो फैखल से ये कार्यक्रम को सुनते हैं और इस बात को कहते हैं कि मैं हूं ना, ये तीन छोटे छोटे शब्दों से जुड़े हुए कि मैं हूं ना आपके द्वारा कहे गए ये तीन शब्द किसी परेशान व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा भर सकते हैं। सुनवाला हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है, इंटरनेट द्वारा आप दुनिया के हर एक प्रांत में सुन सकते हैं और अगर आपके पास भी कोई संदेश है तो जरूर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम कोशिश रखेंगे कि आपके जो संदेश है हम यहाँ से सुना सके। हम अगला सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे और जैसे कि रबीन भाई जी ने कहा है कि ओल्ड इज गोल्ड, तो क्यों ना एक और पुराने गीत की ओर बढ़ते हैं।

इस गोट कहा गया है ये सुंदर सुंदर गीतों को, और आज मैं उसी के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। भाई रामेश्वर जी ने संदेश को रखे है, और संदेश का बोल ये है कि सीमेंट, जिसे हम सीमेंटी कहते हैं, सीमेंट से भी एक सीख मिलती है। जोड़ने के लिए नंबर यानी कि द क्वालिटी होना जरूरी है, और जुड़े रहने के लिए सख्त होना भी जरूरी है। तो ये सुंदर सा संदेश है जो हमारे लिए और भेजे भाई रामेश्वर जी, धन्यवाद हो आपको। हम एक और सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, और गीत का बोल, गीत जो निकाला गया फिल्म एक फूल दो माली नेखती नेखन शस्त्र से, और जो बनाया गया, पिक्चराइज किया गया फिल्म

ये सुंदर सा प्यार भरी गीत को हम सुने सुनो लो। ये भी कहा जाता है कि बस अपना प्यार में फंसे मत रहना, और ये भी सुन लेना कि माँ का प्रेम वह अमृत है जिसको पाने के लिए स्वयं परमात्मा भी तरसते हैं। तो क्यों ना एक वैसा गीत हम सुने।

ये सुंदर सा गीत जो सुनाया गया सभी माताओं के लिए, जो आज कितने माताएं हैं जो अकेले घर से और बैठे हुए, ना कोई बच्चे उनके पास, ना कोई रिश्तेदार उनके पास। प्रकृति ये हमें सिखाते हैं कि पंछी कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसला बनाकर नहीं देता है, वे तो बस उसे उड़ने की कला सिखाते हैं। इसी तरह से हम मनुष्य को भी, हम लोगों को भी ऐसे, हमारा जब जन्म होता है तो हमारे माता पिता हमारे सेवा करते हैं, हमारे और पढ़ाते हैं लिखाते हैं, और एक न एक दिन हम उड़ जाते हैं और बाकी बचते हैं घोंसला में कौन, कहीं माता है कहीं पिता है, और एक न एक दिन फिर वापसी हो जाता है। तो जिंदगी में ये जरूर हमें जानना चाहिए, जिंदगी को खुलकर जीने के लिए एक छोटा सा उसूल बनाइए, रोज कुछ अच्छे याद रखे और कुछ बुरे भुला जाइए।

दोस्तों सुनने वालों, पा लेने का बेचैनी और खो देने का डर बस इतना ही है जिंदगी का सफ़र।

जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं वो पल, वो फिर कभी नहीं आते हैं, वो फिर कभी नहीं आते हैं। कदर करिए ऐसे लोगों की जो पैसे और तोहफे नहीं खुद को आप पर खर्च करते हैं। ऐसे लोगों दुकानों में नहीं नसीब से मिलते हैं।

दोस्तों सुनने वालों, ये भी हम जाने कि सब्र में वो ताकत है जो सताने वाले को भी बुनियाद तक हिला देता है।

परमेश्वर जी की ओर से ये संदेश भेजा गया कि उन्हीं यादों को सहेजिए जो आँखों में चमक पैदा करे।

सहेजिए, जो आँखों को चमक पैदा करे उन्हें नहीं, जो चेहरे पर शिकन पैदा करे।

सुना लो, ईश्वर जी ने एक और संदेश को और रखे है, हम उसे भी आपके लिए और सुना देते हैं कि सात समय और समर्पण दुनिया का सबसे अच्छे भेंट है। तो ईश्वर जी आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसा सुंदर सुंदर और संदेश को हमारे लिए भेजते हैं।

एक सुंदर सा दिन आपको होए और कहते हैं कि एक दिन कहानी बनकर रह जाएंगे हम सब, एक दिन कहानी बनकर रह जाएंगे हम सब, कोशिश रहे कि कहानी अच्छे हो।

जीवन है, बस यही है जीवन। रिश्तों को कदर करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए, बाद में सुखी पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। तो दोस्तों, इन बातों पे ध्यान देते हुए एक शुभ दिवस आपको प्रस्तुत किया जाता है और एक और सुंदर सा ओल्ड इस गोल्ड, जो पुराने गीत के ओर हम प्लेयर पे चुन करके रखते हैं।

जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, और ये हम जाने कि दुनिया में सिर्फ दिल ही है जो बिना आराम किए काम करता है। इसीलिए उसे खुश रखो, चाहे वो अपना हो या अपनों का।

जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, और अकेले होने से इस ज्ञान को प्राप्त हुआ कि अच्छे दिल और अच्छे स्वभाव दोनों आवश्यक है। अच्छे दिल और अच्छे स्वभाव दोनों आवश्यक है। अच्छे दिल से रिश्ते बनते हैं और अच्छे स्वभाव से जीवन भर टिकते हैं।

जीवन में भी कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो अनजाने होकर भी अपनों से बढ़कर स्नेह और सम्मान दे जाते हैं। और ऐसा भी है कुछ अपने होकर भी धोखा दे जाते हैं।

और क्यों ना कोई सराहना करे या निंदा, लाभ आपका ही है। कारण यह है कि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सुधारने का अवसर। तो क्यों ना हम एक सुंदर सा ओल्ड इज गोल्ड आज उसी मूड में हूँ।

मुसाफिर हो, ना घर हो ना ठिकाना। और दोस्तों यहाँ भी एक संदेश जो हमने इसमें जोड़ देते हैं।

सुनो लो हम सभी मुसाफिर होते हैं और कहते संबंध अगर हृदय से हो तो मन कभी नहीं भरता है।

दोस्तों सुनने वालों, ये गीत, सुंदर सा गीत जो किशोर कुमार जी के आवाज़ में, कि मुसाफिर है हम यारो, इसी पे कुछ और जोर दिया जाता है कि हम जब इस बात को जाने कि पिता कभी नहीं कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, और माँ ने कभी नहीं कहा कि मेरा तबीयत खराब है, इन्हीं दो झूठ की वजह से आपकी दुनिया सुंदर बनी हुई है। तो आज अपने समय निकाल करके क्यों ना अपने माँ को हम फोन करते हैं, अपने पिता को फोन करते हैं जो आज है इस दुनिया में, क्योंकि हम भी हैं मुसाफिर और एक ना एक दिन तो वापसी है हम सभी का।

और दोस्तों इस बात को हम भी जाने कि क्रोध और आंधी सामान्य है। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ है।

जिन रिश्ते के लिए रोते हो वो तुम्हारे पूरे जलने तक भी नहीं रुकेंगे। संतुष्ट रहना सीखो। संतुष्ट रहना सीखो, जितना मिला है पर्याप्त है।

दोस्तों, सुनने वालों, मैं हूं आपका सेवक संजय और यही आशा रखता हूं कि जितना देर तक हम कुछ पुराने गीतों के साथ आपके साथ जुड़े रहे और आपको जरूर कुछ ना कुछ इसमें से अच्छा लगा होगा। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हुए हमारे कोलेखा साथी जो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, सभी को एक शुभ दिवस, नमस्कार, विश यू अ प्लेजेंट डे।

कहते ही कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जांच, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फाहुन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार, प्यार भरी राम सत श्री अकाल। जोनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का देश और विदेश के समाचार को सुनाना है हमारा काम, यही है हमारे मोहब्बत भरी और प्यार की पैगाम। आप लोग को एक बार फिर कहते हैं स्वागतम स्वागतम। हमारा प्रोग्राम हर मंगलवार को चलते ही शाम को 5 से लेकर 6 बजे, कभी कभी 6 से लेकर 7 बजे, यानी शुक्रवार को फ्राइडे को चलते हैं 6 बजे हमारा देश विदेश के समाचार। रविवार के सोमदाह को दिन में 1 बजे हम हर हाल करते हैं। तो हमारे जनता, हमारे दोस्तों, हम तुरंत चलते हैं अपना सूरीनाम की ओर, वहां से हम आज शुरुआत करेंगे अपना समाचार। आप लोग जानते हैं कादेंसी कौन है भैया? एक कादेंसी जो है, और एक कादेंसी है भैया फैया पेयर रहा, फैया पेयर रहा कादेंसी, और एक आर्टिस है भैया कादेंसी, आर्टिस भी हैगा। तो ये फैया पेयर रहा, और यहाँ पर अब अपना बयान यहाँ पे करते हैं। कादेंसी बोले है वही हैव सो वी सो ओ खेन इरलक फलक, बोले हमार जनता जो न है सूरीनाम के, बोले इरलक ना है, अलग जनता ना है, इकादेंसी बोले है दोस्तों। और यहां बोले आर्नोल्ड बुकरू, आर्नोल्ड बुकरू बोले बतेकन बेहतर बकेंट आर्टिस कादेंसी, ओकर नाम है आर्नोल्ड पुकरू, ओकर नाम है कादेंसी। वो बोले सरनाम के जनता जो न है, बोले इरलक ना, सच्चाई पे ना है, बोले हेगा जो समय पे बाउटर्स प्रेसिडेंट बाउटर्स रहा, बोले कि उस समय पे इल किसके वे ओम द एड फूरिंग पर आईएमएफ प्रोग्रामो जो रहा, तू जाने आईएमएफ प्रोग्रामा बनावे कि ऐसे ऐसे तुनन बसैन करिए, तब देशवा तोर मोई हुई। बोले जब उस समय पे प्रेसिडेंट रहा बाउटर्स, अब बोले जो का चाहता एड फूर करे के आईएमएफ के प्रोग्रामा, कैडेंसी बोले हैगा सामल लिविंग बोले ऑन फॉर दून द क्रिटिस रहा एंड वर्थ इंफॉर्मेशन फाक सोंदर एकन ऑन द सुख अनखनो, बोले जनता न जात्रा अंदर सुख करे, बोले जोन ची बोलत रहा बहुता वही बतिया, बोले सबन सुनत रहा, बोले अब जाए के रखेरे संतों की ब्रुंस्वेग जले से, तो बोले उस सब एगो स्वार प्रोग्रामा हैगा, बोले आईएमएफ के बोले उस सब एट फूर करी सेगा, बोले बहुतर्स न कर ले रहा एट फूर वार दोर देशवा एनम छिछक ले दर होई रहा, बोले जो ब्रुंस्वेग और संतों की ले से देशवा, तो बोले उस सब अपन आई एमएफ प्रोग्रामा बोले उस फूर करी से, बोले इन सही तखान में तो स्वार प्रोग्रामा ऐत फूरन, और बोले ऋषि को रहा उस सब के दत से बेर ईस्ट फॉलखंड फॉर किसिंग ना रहे सो वार्डन कस्टूर ओम दत उस सब जनता लोग के स्वार बसाए न करवावत रहा देशवा करे के बके ऊंची बहुत न कर ले रहा बसाए न कर ले रहा वही मारे देशवा सुधरल ना। तो अब बोले ब्रुंस्वेग और रोनी ब्रुंस्वेग और काबल संतोखी जली से, तो उसे तोह ऋषि को वाले से बाकी जनता बोले हम लोग के बोले कि चलाक ना है कि वो चीज हुआ वो देख पावे। हाँ दोस्तों, बोले वे हेवन सो इज ओक इन इरलक फलक, बोले दार ओम स्टेमन वर्स ओक, बोले हेगा वह खान नोइत ऑन सुकन अस ईमान इसेख, बोले सनी मक kakeloos aan. Bouters heeft zelf in het verleden gezegd dat indien hij het IMF-programma uitvoert, hij morgen dan thuis is. En dan heeft Chan ook thuis gezet. Maar er moest iets gebeuren, want akondre bingo in wan ola. Bole deswa hol me jatra. Lekin Bouters uchiwa nagaila deke. Bouters bole, bole jab hum IMF-programma kar, to bole janta hamme ghare baitha di. मैं जनता बोले ना देखे कुछ युवा नौ दख रहा आई एम एफ प्रोग्राम एकदम छिचा के लेदर
रहा बकी जनता ना देख पाए कि तो ब्रिंसवेग असंतोखी चीजवा कल रहा ये बात करेंसी बोले हैं और बोले हैं एरवास्किन आंध्र ऑप्सी बोले वांत है लंच साथ में फील स्किल्डन बोले बहुत कर्जा ले रहा और बोले रखेरिंग ब्रिंसवेग और का बोले है संतोखी बोले इन रखेरिंग जो नहीं गा दोन सक्सेसफुल आउटफुर करी से गा यानी कि आईएमएस प्रोग्राम और बोले ओकर फोरदील जो नहीं एन न्यू कांड हुईडक रखेरिंग सिमोंस के रखेरिंग और एनपीएस के रखेरिंग द फ्रुक्टन एरफान प्लुकन बोले अब उस अब ओकर फ्रुक्ट प्लुक करे हैं बोले फॉल्स द पॉलिटिकस इस हेड ओक duidelijk dat regering Simon Ruslan meer geld heeft geleend dan regering Santoki. Hij zelf had zich aankomen dat Jennifer Simon een moeilijke regeerperiode tegemoet zou gaan, aangezien zij weigert de deskundigheid van buiten, waaronder die hem van de VHP te accepteren. Cadenzi stelt dat hij voordat hij werd bedankt als adviseur van de staatshoofd al een heleboel plannen op papier had ingediend, waarmee hij het staatshoofd zou ondersteunen om haar beleid gemakkelijker uit te voeren. Helaas is daar niets mee gedaan en is hij naar huis gestuurd. Maar ja, de cadentie karbari mee. Boli zega, toen hem pinse ka herhaal kri. Marjanta.

एक आदमी लिखल है कि एक सिपाही खोजे बहुत जोर तोर से भैया एगो तुएसीफन तक 10 तारीख नवंबर में नहीं तुएसीफ तक में एक खबर है बुरकी ओकर नाम बा और का बोले है वर्थ इरफान फरदाग स्कुलक कले दी नी में अन क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन ओवरट्रेडिंग फॉर द वेट फॉर द मिडलन एंड ओवरट्रेडिंग फॉर वेरा भैया ऐसे बात है हमारे प्यारे प्यारे मीठा मीठा जनता अब देखो एगो ब्राजील के औरत भैया फेफन फेफ तक यार में ओके सबन छोड़ाई से फेफन फ्रोफना फेफन फेफ तक यार बफराइट एड मॉडर्न स्लाफर नहीं बे रेक फैमिली अब देखो एगो ट्वीएसएस तक यार का ब्राजीलियन से औरत हैगा इस बफराइट की फेफन फेफ तक यार ओ काम करी से अरबेज ओवरइनकम्स एंड फ्रेवेल फॉर लीडर ओके सेवन इसोलेर कलरागो घर में वेरक हार्ड फॉर एक फॉर थ्री जेनरेशंस तीन जेनरेशंस को काम कर रहा फंड सेल्फ द फॉरवोगन फैमिली द साक कम ऑन इट लिखना ऑन एनोनिमिटी 1971 में ओ टू से 7 यार आउट वाज सामने में थन मदर एंड यंगर सिस terecht bij haar familie in de omgeving van Fortaleza Mgailaha. Oer haar noordoosten Brazilië, dus Chota op het zand bij ze. Oer Gailaha ook haar wame. Voor haar overleden zou de moeder het meisje hebben gegeven. Bolle Margaret Larkwauke dede raha. Bolle aan een dochter van de een persoon van het gezin. Bolle haar jongere zus bleef eens bij de familie wonen. Maar vertrok volgens het gezin later na een ruzie. Ego Chalgera. Bolle maar ego ke 55 jaar. Hoe haar me isoleer kerke. O ze kam karwaute bhaiya. Kon niet lezen en beschikte niet over een bankrekening. Ook had zij geen vrienden of partner. Ging zij nooit alleen op pad. En had zij geen contact met haar eigen familie. Op bolle ze leefde in een soort gevangenis. Bolle, ze heeft nooit een privéleven gehad, mensen. Onia betaalt onderzoek naar mogelijke fraude. Familie wordt ook verdacht van fraude met overheidsgeld. De vrouw ontving maandelijk 600 reel, ongeveer 95 euro via een sociale programma voor mensen armoede. Ook een fraude kalera bhai. To ye sababan Brazil ke hai hamare प्यारे प्यारे जनता हम सोचे आप लोग के गीत सुना रही तो अभी हम वापस आ जाएंगे।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

और दोस्तों हम अपना समाचार को आगे को बढ़ाते हैं। अब देखो जनता क्या हुआ है, मार्टिन लूथर किंग वेख में 45,000 भैया एसआरडी रो वैले कटली से नानी। हाँ कटली से एगो आदमी कटली से गए ले उतरा पैसा रोफ करके चल गए है और जो ओवर फाल करे से कटली से ऐसे ना दिखाई से काटी से भैया स्नेफर वॉर्नर ऑफ आंसन बोफन लेप ऊपर से ओठ काट दे से रमिया के नाक ना काटी से ओठ काटी से भैया और फैफो फिर तक दैसन मार के चल गए भाई। सूरीनाम के बाद बतियाल हम जाएल उक्रेन के भैया रुसलांत आदमी मारे है उक्रेन में बेसुल्ले है और उक्रेन तेल के सब कुछ पराठा कर ले बा फिर रुसलांत में कि हुआ पे जनता के तेल ना रहेगा। अब उक्रेन एक और बवा करी से पुतिन के ऊपर उक्रेन फॉल से आन आजोफ आन न्यू हो पेंडो से फॉर पुतिन। अब ये सब का करे उक्रेन जे तरह रुसलान के बोट समुंदर में बात तेल ले जाए कब ओके दागे भैया। उक्रेन फॉल रेम एंड वीक फ्रॉक्स के इपन टैंकर्स एंड स्लीप बोटन ऑफ द सी फन आसोफ आन डिफेंसी एक्सपर्ट पैट्रिक बोल्डर फॉर द Forstage legt uit wat de gevolgen zijn voor Rusland. De Rusland kiezingen ook bedrijf aan het houden. Bhaiya, socho. Ab dekho, waarom de NAVO veel miljard euro aan de vluchtuig uitgeeft. Ja, wat de NAVO veel miljard paisa uitgeven, kan je zeggen. Maar wat doet die toestel in de lucht? Ik heb maar hem zo'n lucht om een kontje kare hè. लुख्तुआ में कौनची करे भैया एकर बारे में आप लोग को हम जरूर बताएंगे। साथ ही साथ भैया गासा में गासा तो लोन जानो है गासा में पालस्तीन के बताएला पालस्तीन से बोईखेंगे को गासा बा हमास इसराइल जाए के को पुलिसी बिरो के दागी से भैया जो पुलिसी बिरो हुआ कहाँ बोले है का हमास टेररिस्ट ग्रुप हमास ड्राई करत रहा और वहाँ पे दागी से हुआ पे स्कूल सब मर गए है बे इसराइल लुख्त लुख्त अनफा ओपन ब्यूरो फॉर द पॉलिसी नॉर्थ के गासा में पैलेस्टाइन से ऑथोरिटीतन 8 गो आदमी मरले हुआ पैलेस्टाइन से बवेकिंग हमास दी द पॉलिसी कंट्रोलर द हैव द अनफॉल फॉरओर्डेल एंड सेग दैट द शेफ ऑन द ब्यूरो अंडर द डोडन इज इसराइल हैव ओपनली मेलने खमाक के को लुख्त अनफॉल फिन करी टेररिस्टन पे जो अक्टूबर से बोले उस सब गासा में बा इसराइल ब्लेव अनफॉलन uitvoeren daar bij zijn volgens Palestijnse autoriteiten 1100 Palestijnen mer ge hè of 3578 Palestijnen chotaige bhaiya wan idhar jab ka bole shuru kari se America daage ke Iran ke idhar shuru kari se Israel Hamas log ke daage ke bhai to ye baat hai ego admi bhaiya Berlin mein pakdan hai 22 aurat ke upar krakh ले रहा 68 यार के आदमी को बर्लिन में है और बतावे हैगा कि नाना हर फरदोफन एंड फरक्रखतन फन 14 फ्राउन फरदोफ करके फरक्रख कर लेने 14 औरत के दी है इन टोटल 22 केस सो हेमन फरक्रख बाप रे 22 केस 14 औरत को फरक्रख कर ले रहा ook zei hij her gevallen hebben verwoond dat meldt Duitser obole de slachtoffer herinneren zich de daden ook wordt nog onderzocht gedaan dat mogelijke andere gevallen die ook kuts kreeg aan video op bole van de verkrachtingen werd aangetroffen de vrouwen ontmoette hij via datings app en drogeerde hij met een combinatie van alcohol en slaappillen mogelijk zijn er nog maar slachtoffer in totaal worden 58 vrouwen in verband gebracht met de zaak. Een van hen zou hij 36 keer hebben verkracht tussen 2010 en 2014, omdat niet sluitend kon worden aangetoond dat hij zei dat ook zij werd gedrogeerd, kunnen de daders vooralsnog niet worden vervolgd.
te socho yedamia kora kamapan huape farkrakh karta sabke bhai bara bara cheez hove duniya pe dosto hiya batao under handling tussen Israel en Libanon herfat in Roman want bole ट्रेम बोले हम लोग गस्प्रेक कर सकेला मैं बोले लड़ाई ना रुकी अब बोले अब हमें चाहिए लड़ाइया दो रोज आई ईरान के और अमेरिका से बोले इन तुसे मंगियो गस्प्रेक करे तो इसकी आलती बरेट तो ये बात है हमारी जनता एक आदमी भैया 30,000 पैसा गए लेनी करी से मां अंदर पान अप सोना के अंगूठी बोले धरी से ब्लैक भइल अख्तराफ की उस सोना नारा भाई ने पची दे दे के देर तक दैसन उ ले ले से एगो सेशन देर तक यार खा आन के फर फरक्लार करे कि ongeveer 2 jaar actief is al geldschieter op paisa leni kare hega 36 jaar ke via zijn kantoor verstrekt hij leningen waarbij klanten goederen als onderpand kunnen aanbieden. Daarbij worden persoon gegeven van de klant aangeboden goederen en uitbetaalde bedrag geregistreerd en vastgelegd in een overeenkomst op geldschieter ha bakie geldschieter bhaiya bauroka nep sona le lees ha aur 30,000 ke bhar deise totaal gewicht van 30 gram betalen we volgende beschikbare gegevens zouden de ringen van 14 karat goud zijn. De gebruikelijke test om de echtheid van de sieraden vast te stellen bleek echter niet correct te zijn uitgevoerd. Toen betalen we 2 ringen inderdaad haar beleend en daarvoor 30,000 SRD Upaira. Volgens hem waren de ringen zijn eigendom, maar wist hij niet dat deze geen echt goud waren. Hij gaf aan bereid te zijn de geleende bedrag terug te betalen. Toen je baat hij, Hamari Janta, Hamara Samachani Hasi. धीरे धीरे खत्म होता का है अब देखो भैया एक आदमी उत्तर के बतराई चोरी करता सरनाम में फिर अंदर तक यार के भैया वो पकड़ाई गए दाफ तुरक के ओ तो के बतराई वो चोरी करत रहा हमारे नानी और कहा बोलियो भैया चोरी करत रहा हाँ।

बस एक गीत से अपना समाचार को हम खत्म करते हैं और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम नमस्कार, प्यार भरे नाम, सत श्री अकाल। जॉनी नंबर 1 है हमारा नाम।

और तू हमारे दिलवा तोड़ के न चाहिए मॉरिशियस लोकल सॉन्ग आज के हम सुनाएंगे। सनी जुमन आपको क्या सुनाते हैं?

और गुलाबी आंखें, ये तो बॉलीवुड सॉन्ग है, लेकिन भोजपुरी में लोग मॉरिशस में कैसे गाते हैं हमारे यारो? तो हम चलते हैं जोना टॉप टॉप और फन मॉरिशस, और भोजपुरी सॉन्ग है, आओ सुना जाए।

0: हम तो रानाई पी आप पी गोना हम तो रानाई पी आप सीतोना हम तो राय से हिला के पिया देवो आगासीना
1: हिलाते रहिए हिलाते रहिए निमन से हिलावेले हाउ बुसों सहित हिलावत हुए फाट जाए तो तोर मुंह भीन जाए
0: जब ले तू नहीं पीबे तम हिलाते रहा हमार नाम सोना

0: से खरीद के हम अपन बस में ले लेवा सोना के ताकत से तोर अपन मुठी में रखब।
1: हम तो तोर भगवान है, तोर जिंदगी हमार बात और जिंदगी
0: दोनों के मुलाकात, दोनों के मुलाकात आज होलबा देखब सा तू बड़ा कि हम बड़ा।
1: आज चाहे आज देखे के सुनवा केकर में कितना खून बार कितना पानी
0: देखब सा बादर बड़ा कि बिजली बड़ा।

और चादर ओढ़ के या लंगोटी, बोले लंगोटी झार के जा या छाता ओढ़ के जा दोस्तों, लेकिन हंगामा ही हंगामा प्रोग्राम। हम आपको भोजपुरी बॉयस के जाते हैं कि मीठा मीठा हो जाए।

बदिया ले ले हमारे जान, हम जाते हैं गौरी ब्रदर्स के ओर। तो गौरी ब्रदर बोले, करम झाड़ो रे दमदवा, करम झाड़ो रे दमदवा, क्या कहते हैं, सॉन्ग्स फ्रॉम मॉरिशियस।

और दमदवा क्या क्या मांगते भैया, तो सास देवे है गाड़ी, तो ससुर देवे है टैक्सी, तो ये सब भोजपुरी सॉन्ग में आपको मिलते हैं कि अरे सुनवा क्या कहते हैं, अरे सुनवा।

0: जोना और जोना है हमारे यारो एन वही खान आर्द आंदर निवर हमारा बुढ़िया नाचे है
1: एगो नचनिया रोज रोज ऐसा नच

भैया के घरवाली यानी ये बुढ़िया बोलते हैं, बोले रोज रोज रकम रकम नाच दिखावे है, तो खाली एक ना नचावे भैया तो ठीक है, बाहर नाचे कोई बात ना है। तो गौरी ब्रदर्स का ये सॉन्ग आप लोग को हमने सुना दिया है हमारे यारो। उसके बाद हम चलते ही एक और सुना जाए, निशा, निशा के बातचीत हो रहा है और भोजपुरी वॉइस क्या सुनाती है।

और हाय मेरे जाने मन, हाय मेरे दिल रुबा, हाय मेरे मुनमुन की कौन ची बोले दोस्तों, लेकिन बहुत प्यारा सॉन्ग है।

तो यहाँ तक था हमारा भोजपुरी सॉन्ग आज के हमारे दोस्तों मुकेश भाई थी मुकेश करोड़ों का दिल चुराने वाला हार्ट ऑफ मिलियंस और वह माई थी मुकेश का ये सॉन्ग है। शंकर जय किशन के साथ में हसर जयपुरी शैलेंद्र।

लगी जाए। और ये गीत के बाद हम चलते हैं और एक सॉन्ग की ओर। ओ हे करोड़ों का दिल चुराने वाला, द हार्ट ऑफ मिलियंस, और वो है माइटी मुकेश का ये सॉन्ग है। दोस्तों आओ सुना जाए क्या है ये।

और दोस्तों जैसे बताएंगे आज हम कुछ यानी कि हॉट वन सॉन्ग आप लोग को हम नॉन स्टॉप डीजे रिमिक्स सॉन्ग सुनाएंगे।

एक बार फिर जॉनी नंबर वन का प्रोग्राम यहां से हम शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करते ही साथ ही साथ हमारे यारो आपको आज हम कुछ रिमिक्स मिलीजुली गीत जो है आपको हम सुनाएंगे हमारे दोस्तों, और यानी कि और क्या क्या करेंगे आपको हम यहां से शुरुआत करते हैं, और कुछ रामदेव चैतू का रिमिक्स है, कुछ और चटनी मसाला इसमें हमने डाल दिया है हमारे यारों।

ओहो जब तू मेरा नाम ना हमारा नाम ना जाने। एक बार फिर कहते हैं जॉनी है हमारा नाम और सॉन्ग है रामदेव चैतू का। आते हॉट सॉन्ग मोख जलू कमेटी का डांस मेंस।

और हो जा राम नाम का पक्का लो भी और क्या मनाए मायामी और रखा रामदेव चैत्य के कुछ रीमेक सॉन्ग आपको हम और सुनाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं पारी करो रेवती राम रूप का गाया हुआ ये और सॉन्ग है आओ मिलकर लातवे बेचकान घूमे घूमे।

हाँ पारी करो और पारी करो ना बोट के पारी करो, ये गाना के नाम है रेवती राम रूप का और ये गाना है पारी करो चटनी रीमेक सॉन्ग है। तो हम फिर चलते हैं रेवती राम रूप की एक और हो जाए और वो भी एक चटनी जोगा शोगा।

ओरो रेवती राम रूप के आवाज में आप लोग सुने हैं हमारे यारो। उसके बाद में हम भी चलते हैं अपना देश की रामदेव जय दू रे में इस बैठक गाना चट।

0: और मैं रमता जोगी राम के बाद में। दोस्तों हम चलते हैं और फिर एक बार कहाँ चलते हैं, और वो है राधिका की ओर। राधिका दिन बयाल हॉट चटनी जोंग जल मोहो कमेज का दान जमीन से अमेज खान स्विंग और राल वार ये ओक बैंड मख वेल अलमाल अलेन बे रेडियो फाहोन
1: दिनवा कहा गवायो ना।
0: ओहो कहा दिनवा गवाईले है
1: नवा कहा गवा
0: फुसूर फुसूर फुसूर
1: रति।

वो है रसिक रसिक रसिका दीनदयाल होट चटनी हमारे यारो, जो आपको हम आज सुनाते हैं। उसके बाद फिर चलते हैं लोकल रामदेव चैतू।

हर एक काम जो रही के सिरे कराना, जैसे कि खास फरमाइश, जरूरी खबर, मृत्यु समाचार वगैरह वगैरह, आप कॉन्टैक्ट कीजिए फाह और हिंदुस्तानी रेडियो के डॉक्टर से न्यू सीफ तक 3 से 5 2 8 2 8 फी सीफ पर आपको तार करना है।

दिल की महफिल सजाने लगी। दिल के महफिल सजाने लगी के बाद जब भी तुम्हें देखूं तो चैन मिल जाता है। यकीन कीजिए, क्या बात है आप में कि जब तुम्हें देख लेता हूं तो दिल का चैन आ जाता है। वाह,

न्यू सॉन्ग मैं पेश करूंगा दोस्तों। 2025 में ये गीत बना है और मेरे सनम आया है, गाना बोल है मेरे सनम आया है, हम सब मिलकर सुनेंगे।

न्यू सॉन्ग का प्रोग्राम मैं पेश करता हूँ दोस्तों। एक दूसरा न्यू सॉन्ग जो मैं चॉइस करके रखा हूँ, नया प्यार नया एहसास, क्या बात है, नया प्यार नया एहसास। यूबीन नौटियाल के आवाज़ में आप सुनेंगे।

जब जब तेरा प्रेम है अच्छा, जब प्रेम है अच्छा तो सजना जरूर मिलेगा सच्चा तेरे हवाले। अरिजीत सिंह एंड श्रिया घोषाल दोनों के आवाज़ों में मैनू चाहिए इश्क में रंग तेरा, एक हो गया अंग मेरा अंग तेरा।

इंडी लव सॉन्ग्स बॉलीवुड रोमांटिक सॉन्ग्स में अब की बार पुसी का संगीत आप सुनेंगे। इश्क इश्क दीवाना होता है और मस्ताना होता है, उसी से क्या क्या होता है दोस्तों।

हर खुशी से हर गम से, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है मून कॉलिंग, नेहा कक्कर एंड गुड़ सिद्धू।

कर हूं मैं, क्या बात है, हार्ड स्टाइल रोमांटिक सॉन्ग थ्रू लव।

जीते हो किसी ने देश तो किया, हमने तो दिलों को जीता है। आवाज के लिए इस दुनिया में जख्मों और दिलों को सीता है। सुनने वालों के सेवा में सादर सा प्रेम नमस्ते आदाब राम राम सत श्री अकाल। ये फावन हिंदुस्तानी रेडियो है वी पिंच फावन FM पिंच चैनल पर बीफी रेडियो और इंटरनेट रेडियो पर। घड़ी पर देखा जाए तो करीबन 2 मिनट व्यतीत हो चला है 12:23 और ये लाइव कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट हो रहा है दनहा शहर से। जो बीमार है, लाचार है, तंदुरुस्ती दुआ के प्रार्थना है, जिनके घर में कोई शादी हुआ, कोई भी उत्सव हो, फौन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से मुबारकबाद और बधाइयां पेश है। मुझसे पहले आप कार्यक्रम सुन रहे थे हमारे सहयोगी श्रीमान राजन द्वारका जी के। भैया राजन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको एक शुभ दिन पेश किया जा रहा है फौन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से और सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से। भैया राजन एक शुभ शाम। द्वंद्व राक्षस 3 जुलाई है यानी बृहस्पतिवार 16 जुलाई है। आप तत्पर है जो लोग चुनके मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। आप जहाँ भी होंगे, जिस देश में भी होंगे, सुबह होगा या शाम होगी या रात होगा, आप सबका हृदय से स्वागत किया जा रहा है फौन हिंदुस्तानी रेडियो के तरफ से। मैं हूँ आपका सेवक गंगा और मैं रहूँगा करीबन शाम 3 बजे तक। इस उम्मीद के साथ आप हमारा साथ अवश्य देंगे। तो मौसम भी तो बहुत प्यारा है, जहाँ तक मेरा ख्याल है जरा देखूँ तो। हाँ, यहाँ पर दिखा रहा है 24 खराद यानी फिर 3 खराद, तो वास्तव में मौसम बहुत प्यारा है। तो लीजिए इसी प्यारा मौसम में हम आपको ये गीत सुनाते हैं इस तरह से।

एक बात ही कहने की आंखों से कहने दो, ये हाँ ये भी हो सकता है, अगर जो शब्दों से नहीं तो आंखों से भी कह सकते हैं लोग कि हमें तुमसे कितना प्यार है। बहरहाल ये गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आज द्वंद्र राक्षस 3 यूले हैं, 16 जुलाई है और आप तत्पर हैं फिल्म समसोन में से निकाल कर। ये एक दारा सिंह का फिल्म है, जी हाँ एक दारा सिंह का फिल्म है, सुमन कल्याणपुर जी के साथ रफी साहब ने ये गीत आपको सुनाए हैं। चलिए हम पेश कर रहे हैं

हम तेरे दीवाने हैं, मैं आशिक मिट जाने वालों में से है, उदित नारायण और साथी मिलके आपको सुनाए हैं। फिल्म मोहब्बतें में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए हैं ओवर फान हिंदुस्तानी रेडियो यतीन ललित के साज पर। आप चुने फान हिंदुस्तानी रेडियो पर, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका हृदय से स्वागत करते हुए हम चला रहे हैं ये प्यारा गीत इस तरह से।

भूले अफसाने फिर से याद आए, रफ़ी साहब की आवाज़ में पेश हुआ ये गीत हमने पेश किया आपके लिए। उम्मीद है गीत आपको अवश्य अच्छा लगा होगा, क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है बहुत दिन हुए ये गीत हमने चलाए थे, आज फिर याद हो गया, हमने सोचा फिर आपको सुना दूँ। चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं और वो ये है बजरिया के बीच। बस सुनिए लता जी की हाहाकार आवाज़।

गले लग जाऊं बजरिया के बीच, हमने कहा लता मंगेशकर जी नहीं लेकिन आशा जी, आशा जी की आवाज़ में सुनाया गया फान हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में है। चलिए अगला गीत पेश करने वाले हैं और वो ये है, ये गीत दरअसल में यहाँ पर लिखा है कि इस एक्ट्रेस की आंखों को देखकर बहुत से बॉलीवुड वाले फिदा हो जाते थे, पता नहीं हाँ है या ना है, लेकिन सोचिए ये रायश्री है उस ज़माने की एक्ट्रेस 60s का। बाद में वो कहाँ चले गई, हाँ पता चला अमेरिका चली गई, लेकिन उसके बाद फिर कुछ नहीं पता चला इनके बारे में। रायश्री का ये फिल्म है और एक्टर इस वक्त मुझे मालूम नहीं है, शायद याद हो जाएगा बाद में मैं, लेकिन चलो वो गीत तो आपको सुनाते हैं जिनकी आंखों को देखकर बॉलीवुड वाले फिदा हो जाते थे।

तूने मोहब्बत से मेरा दिल भर दिया, रफ़ी साहेब को लता जी आपको सुनाएं। ये गीत हमने निकाले हैं आप ही के लिए शुभकामना के साथ। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है श्रीमान चांद रघुनाथ, श्रीमान चांद रघुनाथ जी के लिए और उनकी धर्मपत्नी खिसला के लिए, अल्फानंदा रह के रहने वाले हैं ये लोग, कार्यक्रम सुन रहे हैं। तो भैया चांद और खिसला जी, लीजिए आपके लिए ये गीत हम चला रहे हैं, तो लीजिए आप ही के लिए हम पेश कर रहे हैं ये गीत।

बन के पंछी गाए प्यार का तराना। लता जी और साथी मिल के आपको सुनाएं ये शानदार गीत। और ये गीत हमने पेश की, देखते हैं, अल्फरान द रेन के रहने वाले श्रीमान चांद रघुनाथ और उनकी धर्मपत्नी खिसला के लिए। आप दोनों की भी बहुत बहुत धन्यवाद खिसला जी और भैया चांद जी। एक शुभ शाम आपको पेश किया जा रहा है ओफर फाहून हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं आपके लिए। ये एक बहुत पुरानी गीत है, जी हाँ बहुत पुरानी गीत है, लेकिन इसे जितने बार भी सुना जाए लगता है हाल ही में रिकॉर्ड हुई है। तो आप सोच रहे होंगे कौन सा गीत है कि यही लगेगा कि ये गीत हाल ही में रिकॉर्ड हुआ है।

दिन हो या रात हम रहे तेरे साथ, रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर फिल्म मिस बॉम्बे में से निकालकर हंसराज बहल के साज पर हमने पेश की आप ही के लिए। आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, आपका हृदय से स्वागत है। तो अगर जहाँ आप चुन ही हैं तो चलिए हम आपको मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस का ये गीत सुनाते हैं।

माइक मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए दो होंठ हिले, किसी ने मुझे ऐप की कि गंगा, ये गीत तो आप अभी चलाए चुके हैं। हाँ, बात थोड़ी सी सही है, दरअसल में वो भी लता जी की थी। जी हाँ, वो लता जी नहीं, वो भी मुकेश का था और धुन एक ही है लेकिन शब्द अलग है। वो था ऐ प्यार मुझे रो लेने दो, और ये था दो होंठ हिले। मुकेश जी की आवाज़ में दोनों गीत गाए गए हैं मुकेश द्वारा, लेकिन शब्द अलग है, धुन वही है। तो यही बात है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन विभिन्न हेल खुल इस तरह हमके नाम आखिर तो नाम लेवे के बाकी तुरंत कान बहुत तेज है और दिमाग बहुत तेज है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गीत पेश करने वाले हैं और वो ये है, चलो सुनते हैं लता जी और सिर्फ लता जी है।

जी हाँ, लता जी की आवाज़ में हम आपको सुनाए हैं यह शानदार गीत। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, यह फिल्म नौशेरवान आदिल का ये गीत हमने पेश किया है। चलो देखते हैं, उत्तराखंड के रहने वाली बिया जी, आप भी कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो लीजिए बिया जी, आपके लिए ये गीत हम चला रहे हैं, इस तरह से आ रहा है ये शानदार गीत है।

0: मेरी आवाज़ के पीछे चले आओ, रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गीत हमने पेश किए। और ये गीत हम पेश किए हैं फ़ौन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में, जबकि वितरक के रहने वाली बिया जी ने तार किए। बिया जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद तार करने का, और ये गीत हम आपके नाम पे चलाएं शुभकामना के साथ। बिया जी, आपको भी एक शुभ दिन पेश किया जा रहा है। तो चलिए, जी हाँ, तो चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, और वो ये है, इस तरह से आ रहा है, देखते हैं लता जी की आवाज़ में एक बार फिर।
1: शर्मा
0: नहीं रफ़ी,

सनसना सनसना सनसनन लता जी और साथ ही मोहम्मद रफ़ी के साथ ये गीत हम पेश किए ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, ये हैं उदित नारायण जी।

उदित नारायण जी की आवाज़ में हम ये गीत आपको सुनाएं, मेरे लिए तूने तुम्हें रब ने बनाया है, और शाम के कार्यक्रम में हमने पेश की। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से

अरे वाह क्या बात है, एस डी बर्मन के साज पर फिल्म बम्बई का बाबू में से निकाल कर लता जी की आवाज़ में हम पेश किए ये शानदार गीत। चलिए अगला गीत चलाने वाले हैं वो माइती मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस। सुनिए इस तरह से।

मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस ये गीत आपको सुनाए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो हमने निकाले फिल्म जिंदगी और तूफान में से निगेटिव फाइव से 1975 का ये गीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर इस गीत में बहुत सारे अच्छे अच्छे शब्द हैं तो मैंने ढूंढा तो पता चला लिखने वाला है राम अवतार त्यागी जी कोई लिखने वाला है लिरिसिस्ट है स्क्राइबर है राम अवतार त्यागी जी की शब्द हैं ये फिल्म जिंदगी और तूफान में से निकाले हमने। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है जी हाँ इस तरह से आ रहा है

ये सोचते ही सोचते सवेरा हो गया, तेरा जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया। लता जी की आवाज़ में पेश किया गया वो परफॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है जहाँ शारदा जी। चाहिए सुनते हैं शारदा जी आपको क्या सुना रही है।

शारदा जी आपको सुनाए और ये शानदार गीत तो से नैना लड़ाए, और ये हमने पेश की वो फरफाउनी हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए शाम का वक्त है, आप भी हैं और मैं भी हूँ, तो देखते हैं, हाँ देखते हैं सेलॉन फ्लेसिंग सेलॉन से तार की है श्रीमती आनी सरजू मिश्र जी और उनके पतिदेव श्रीमान ज्योति सरजू मिश्र। तो लीजिए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के शाम के कार्यक्रम में उन दोनों के लिए मैं गीत पेश कर रहे हैं। महेंद्र कपूर जी है और लता जी, महेंद्र कपूर जी और लता जी के आवाज़ में चलिए हम चला रहे हैं, विशेष करके फ्लेसिंगन सेलॉन के रहने वाले आनी सरजू मिश्र जी और ज्योति सरजू मिश्र जी के लिए ये शानदार गीत इस तरह से सुनिएगा।

0: विशेष किया?
1: मन से मन की डोर बंधी, जब डोर बंधी तो अमर प्रेम मुस्काया। तुम क्या सोच रही थी?
0: मैं सोच रही थी मन में प्रीतम आन बसे, जब आन बसे तो मन मंदिर कहलाया।

मन से मन की डोर बंधी, महेंद्र कपूर जी और लता जी, इन दोनों की आवाज़ में गीत हम आपको सुनाए हैं। और ये गीत चला फ्लिसिंगन से ईलान के रहने वाले श्रीमती आनी सरजू मिसिर और ज्योति सरजू मिसिर जी के दोनों के लिए शुभकामना के साथ ये शानदार गीत हमने पेश किए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। फिल्म मालिक में से निकाल कर निगतिन त्वेन से मृतक 1972 का ये गीत है, राजेंद्र कृष्ण के लिखे हुए गीत और कल्याण जी आनंद जी के साज पर हमने चलाए विशेष करके आनी सरजू मिसिर जी के लिए और ज्योति सरजू मिसिर जी के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ शाम पेश करते हुए। चलिए अगला नंबर पेश करने वाले हैं। जी हाँ, अगला गीत हम चलाने वाले हैं, तो अगला गीत है ये फिल्म गाई तो आपने अवश्य देखे होंगे, एस डी बर्मन के साज है और लता जी की आवाज़ में ये सेमी क्लासिकल सॉन्ग हम आपको सुनाएंगे।

प्रिया तुसे नैना लागी रे, लता जी की आवाज़ में ये गीत हम आपको सुनाए हैं एस डी बर्मन के साज पर, और था फिल्म गायद में से निकाल कर। तो लीजिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, बस आपकी जानी पहचानी गीत है। जी हाँ, एक बार फिल्म आदमी में से निकाले हैं लता जी की आवाज़ में।

फिल्म आदमी में से नौशाद अली के साज पर लता जी की आवाज़ में हमने पेश की कारी बदरिया, और लता जी के बाद हम पेश करते हैं एक बार फिर आशा जी को, और आशा जी कह रही है चेहरे पे खुशी आ जाती है, तो चलो सुनते हैं और जानते हैं कि चेहरे पे कितनी खुशी आती है।

लता जी की आवाज़ में हम आपको सुनाएं, जहाँ तक मेरा ख्याल आप बहुत इत्मीनान से सुन रहे होंगे ये गीत और बहुत सुन रहे थे ये शानदार गीत उफ़ुरफ़ान हिंदुस्तानी रेडियो। अच्छा चलिए, गीत तो समाप्त हो गया, तो गीत अगर जो समाप्त हो गया तो हम पेश करते हैं अगला गीत, और जिसमें लता जी और एवरग्रीन किशोर कुमार है, रूप तेरा मस्ताना।

दिल की बातें दिल ही जाने। लता जी और किशोर कुमार जी मिलके आपको सुनाई ये शानदार गीत, और हमने पेश की फिल्म रूप तेरा मस्ताना में से निकाल कर 1972 का ये फिल्म है, आनंद बख्शी की लिखी हुई गीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। चलो हम पेश करते हैं, बढ़ते हैं चोरी चोरी के ओर। फिल्म चोरी चोरी में जितनी गाने हैं सब बहुत प्यारा है, उनमें से एक गीत मैं निकाल रहा हूँ, बस आप सुनिए कौन सा गीत। लता जी और मन्ना डे जी,

पंछी बन रूप बन के फिरू लता जी की आवाज़ में फिल्म चोरी चोरी में से निकाले हैं ये शानदार गीत। हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। चलिए आपको धीरे धीरे मैं कहीं और ले जा रहा हूँ, जी हाँ धीरे धीरे कहीं और ले जा रहा हूँ, और आपको सुनाता हूँ ये गीत।

हाँ, दिल से मिला ले दिल प्यार कीजिए, और ये गीत चला लता जी आपको सुनाए हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए, हमने कहा था आपको पीछे पीछे ले जाएंगे, पीछे ले जाएंगे, तो लीजिए पीछे ले जाते समय हम आपको ये भी सुना रहे हैं उसी समय का। ये बहुत प्रचलित गाना था, बहुत पॉपुलर था, कौन इसे नहीं जानता है।

दुनिया का मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी है, शमशाद बेगम की आवाज़ में फिल्म बहार। जी हाँ, फिल्म बहार में से निकाले हैं ये शानदार गीत, बहुत पुराने गीत जहाँ तक मैं आया, मेरे ख्याल है कितने लोग यही गाना सुन सुन कर आज बड़े हो गए हैं, बूढ़े हो गए, आजा हो गए, आजी हो गए, नाना हो गए, नानी हो गए, यहाँ की पर राजा पर नानी भी हो गए होंगे। और ये शानदार गीत हम आपको सुनाए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, उम्मीद है इस गीत से आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो गए होंगे। क्या ख्याल है, फिल्म फिल्म फिल्म बिन फेरे हम तेरे, नेगनती नेगन सैफ तक का ये गीत उषा खन्ना के साज पर रफ़ी साहब की आवाज़ में। जी हाँ, ये गीत हो सकता है बहुत दिनों बाद आज आप सुनोगे, मैं भी बहुत दिनों बाद ये गीत चला रहा हूँ, लेकिन ये भी मुमकिन है कि शायद हमारे सहयोगियों ने चलाए होंगे, तो मेरी बदनसीबी है, लेकिन गीत तो मैं चलाऊँगा अवश्य। रफ़ी साहब की आवाज़ में फिल्म बिन फेरे हम तेरे।

दोस्त बन के आए हो, दोस्त बन के रहना है रफ़ी साहब और उषा खन्ना के साथ, पर उषा खन्ना जी के साथ खुद निकती नेक नसीब तक का ये गीत हमने पेश किया ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, जी हाँ, और वो ये है

0: इन प्यार की राहों में ये शानदार गीत चलाया कार्यक्रम में हमने पेश किया। हमने शायद तेरे गीत रखे हैं, इसे हम चून नहीं किए हैं, सुने भी नहीं हैं, लेकिन हम पढ़ते हैं उसका टाइटल, अच्छी भी लगती हूँ सुंदर भी लगती हूँ। तो चलो सुनते हैं कि लता जी क्या कह रही है। फिल्म है गर्म खून, अरे वाह क्या बात है, फिल्म है गर्म खून और लता कह रही है मैं अच्छी भी लगती हूँ सुंदर भी लगती हूँ। तो चलो सुनते हैं।
1: अच्छी भी लगती हूँ

आ जा रे आ जा सनम, अच्छी भी लगती हूँ, सुंदर भी लगती हूँ, शंकर जय किशन के साज था। जी हाँ, निकली ताकत का ये फिल्म है, फिल्म गरम खून, जैसे गरम खून है वैसा फिल्म की गीत भी है और लता जी आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से आ रहा है। जी हाँ, माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, फिल्म पूर्णिमा में से।

माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी फिल्म पूर्णिमा में से निकाल कर ये गीत हम पेश किए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलो देखते हैं हम अगला गीत चलाने वाले हैं और वो ये है, जी हाँ, फिल्म फिल्म फिल्म मिलाप, फिल्म मिलाप में से निकाल रहे हैं। ये भी निकिता ट्विन सैफ तक का है, ब्रिजभूषण के साज पर। और चलिए हम आपको सुनाते हैं माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, करोड़ों के दिल पर राज करने वाला।

कई सदियों से कई जन्मों से द हार्ट ऑफ मिलियंस मैथिली मुकेश आपको सुनाए ये शानदार गीत आओ चलाओ फरफाओ हिंदुस्तानी रेडियो। जी हाँ देखते हैं तो ब्रिजभूषण के साज पर, जी हाँ ब्रिजभूषण के साज पर निकली त्वें से ही पंथ का ये गीत हम आपको सुनाए फिल्म मिलाप में से निकाल कर। तो चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, जी हाँ क्योंकि धीरे धीरे अब तो समय हो रहा है, अब हाँ अभी थोड़ी आधी घंटा बाकी है, तो लीजिए हम आपको ये गीत सुना रहे हैं।

लता जी और मन्ना डे जी, जी हाँ, शंकर जय किशन के साज पर चोरी चोरी में से निकाल कर ये गीत हमने चलाए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ, मैं चला रहा हूँ, आप लोग में ऐप पर हैं और बहुत बहुत धन्यवाद, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप ऐप करते रहते हैं और मुझसे बातें करते रहते हैं। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो ये है कि चलो सुनते हैं कि आशा जी क्या हंगामा कर रही है। जी हाँ, मैं भी देखना चाहता हूँ और सुनना भी चाहता हूँ। फिल्म अनहोनी में से निकाले निकतिन द्रिये सैफ इन तख लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर हंगामा हो गया।

दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो कुछ नहीं कहते, मगर मगर

आराम, राति, सुबह, दोपहर और शाम, छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं। देखो ना, दर्द, ठेस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं।

0: मिस रूपा।
1: हंगामा हो गया। जी हाँ आयशा जी, आपको सुनाए कौन सा हंगामा उन्होंने कर दी और हमने पेश की ओवर फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से देखते हैं। जी हाँ, कहाँ गया मेरा गीत? हाँ मिल गया। हाँ

ओपन ईयर के साथ पर आशा जी फिल्म मेरे सनम में से निकाल कर हमने शाम के कार्यक्रम में आपको सुनाए। घड़ी पर देखूं तो देख रहा हूं 10 मिनट बाकी है 3 बजने में, और जहां तक मेरा ख्याल है धीरे धीरे हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन इजाज़त लेने से पहले हम आपको ये गीत सुनाते हैं। ये भी एक पुरानी गीत है।

घड़ी पर देखा जाए 10 मिनट बाकी है 3 बजने में। यहाँ तक था ये कार्यक्रम जो मैंने पेश की, इस उम्मीद के साथ आप इसे श्रवण किए होंगे, और मैं आपसे मिल रहा हूँ आने वाला रविवार को, जी हाँ सोमवार को 8 और 10 के दरमियान सुबह नहीं लेकिन रात्रि को, गीत गज़ल लेकर श्रीमान यूसुफ के साथ। तो सुन तख्र और मुझे आप इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले उन लोगों के अवश्य हम धन्यवाद देना चाहते हैं जैसे कि जो कार्यक्रम में भाग भी लिए हैं, कितने लोग भी सुनते हैं, सिर्फ ऐप किए हैं, नाम नहीं बताना चाहते हैं। अरे मैं उनका नाम जानता हूँ लेकिन नाम वो लोग नहीं चाहते हैं कि हम लूँ। लेकिन देखते हैं अल्फा रांदे रैन के नारे रहने वाले श्रीमान चांद्र घुनाथ और उनकी धर्मपत्नी खिसला जी, और इतरा के रहने वाले बिया जी, और फ्लेसगंज से ईरान के रहने वाली आनी जी और ज्योति सरजू मिसिर जी, आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ फावन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं के तरफ से और अपने तरफ से और सभी उम्र ऊपर की तरफ से। मेरे बाद आप सुनोगे, सभी सहयोगी मिलकर आपकी सेवा करेंगे, और जैसे मैंने कहा मैं आपसे मिल रहा हूँ सोमवार को, आने वाला सोमवार को, रविवार को, त्विंत हुयर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, आप सबको एक शुभ शाम पेश किया जा रहा है।

और मूवी के नाम है साजन। और कुछ हिट सॉन्ग आप लोग को हम आज सुने, तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर।

करने को ये सॉन्ग थे और हम चलते ही दोस्तों आप लोग जानते ही यार नेक तक का सोन और वो कुछ और थे और ओल्ड इन गोल्ड तो और कुछ है दोस्तों और जो नया नया गीत है वो तो भी अपनी जगह पे भी वो ठीक है लेकिन हम चलते हैं यार निघन तक का जों और वो है बहुत प्यार करते हैं और करते ही रहेंगे मोफिक राम है जाजन।

प्यार करते हैं, तुझको जन्म तार आया है लंजमल्ले वार्दे से दोस्तों। मैं दीवाना मस्ताना और है मैं की मुगेश का ये सॉन्ग है।

ये बहुत पुराना गीत है और करोड़ों को दिल चुराने वाला वो है माइती मुकेश का ये सॉन्ग है। और इस फिल्म में दोस्तों बहुत पुराना फिल्म है 40 Days का ये मूवी सॉन्ग है जो आप सबके लिए हमने चला दिया है। इसमें प्रेमनाथ ने काम किया है शकीला के साथ। तो दोस्तों तो प्यार का सुहाना जफर आपको हम सुनाएंगे। मुकेश एवरग्रीन्स मेलोडी सॉन्ग है, ओल्ड हिंदी रोमांटिक सॉन्ग आपको हम यहां से सुनाएंगे। और गीत है इस फिल्म में दोस्तों, लेकिन आपको हम सुनाएंगे प्यार का सुहाना जफर है।

अभी अपना दिल उसी को दीजिए जिस तुम्हारे दिल के काबिल है। तो काबिल के बांज करते हैं तो हम चलते हैं, मौफी का नाम है भरोसा, निकटी होंद द्रियन सस्तक का ये फिल्म है और गुरुदत्त और आशा परेख ने इस मूवी में सुपरहिट फॉलो फिल्म है जिसमें काम किया है। आओ मिलकर सुना जाए दोस्तों।

0: Quartet.
1: Zo, die kan wel een cool best pro.
2: Yes, dosto. तो ये कुछ बीच बीच में कभी कभी अच्छे अच्छे गीत सुनाने के मूड में हम हो जाते हैं, और जब गीत सुनाते हैं तो कभी कभी दिल भी रो देते हैं हमारे दोस्तों।

तारीफ करते है गुरु दद और आशा पारेख ने भरोसा मोफी के नाम है निहति द्री एंसेस्टर का बदमाश श्री मोहम्मद रफी का ये गया हुआ जोंग है। दोस्तों हम चलते हैं अगला अगला अगला अगला जोंग की ओर है।

ऐ दिल मुझे भी आ बता दे तू किस पे आ गया है, अगर आपके दिल किसी पे आ गया है तो जरूर बता देना।

0: इस मूवी में और फिल्म के नाम है अंदाज 1949 का ये सॉन्ग है जिसमें दिलीप कुमार ने काम किए हैं और राजेंद्र कुमार ने काम किए हैं नौजात के साथ में
1: टूटे ना दिल टूटे ना।
0: हम चलते हैं एक और सॉन्ग आशा भोसले मधुबाला अशोक कुमार इस फिल्म में काम किए हैं हावड़ा ब्रिज

मूवी के नाम थी हावड़ा ब्रिज। एक और अगला सॉन्ग किम जेते दूर कोई गाए धुनिए।

और दोस्तों, जैसे हमने आपको कहा है कि आज हम आप कुछ सॉन्ग सुनाएंगे, मोहम्मद अजीज का सॉन्ग और एक बगल उसके बाद, और वो है टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानू और अलका यांगनिक का सॉन्ग हम आपको सुनाएंगे।

और कोई तलाश है जिंदगी तो कोई साथी चाहिए। अब हम चलते हैं कुमार शानू के बांट में एक बार फिर मोहम्मद अजीज की ओर।

तो मोहम्मद अजीज ने कहा कि ये गम ना होता तो वो शराब कभी नहीं पीता। तो उसके बाद हम चलते हैं टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानू एंड अलका याग्निक।

और दोस्तों अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज का ये सॉन्ग थे। उसके बाद हम चलते हैं एक बार और आका यागनी कुमार शानू के उरे और हमारे यारो तो हम चलते हैं एवरीग्रीन कुमार जानू एंड अलका यंगनी।

और बरसात में भी आग लग जाती है दोस्तों, तो ये सब तो प्यार की बातें होती है यार। तख्तक में जो सदाबहार सॉन्ग है और वो है कुमार शानू अलका यांगनी का एक गीत, आपको हम सुनाते हैं। और दिलबर के बाद में हम क्या आते हैं,

और दोस्तों हाल क्या है, हाल क्या है दिलों का, ना पूछो ना पूछो सनम। आज भी बीच बीच में कुछ शायरी आप लोग को हम सुनाते ही रहेंगे। क्या कहते हैं, शिकायत क्या करूं दोनों तरफ गम का फजाना है, शिकायत क्या करूं दोनों तरफ गम का फजाना है, मेरे आगे मोहब्बत है और तेरे आगे क्या है दोस्तों, तेरे आगे जमाना है। तो कुछ कहते हैं एक और, कि तो हजार बार भी रोती तो मना लूंगा, तू हजार बार रो, तू हजार बार भी रोती तो मना लूंगा तुझे, मगर देख जानू मोहब्बत में शामिल कोई दूसरा ना हो, तब तो मनावे, नहीं वैसे लात ना चली। नहीं दोस्तों, प्यार में लात नहीं, प्यार चलते हैं। किस्मत या मेरी इम्तिहान ले रही है, किस्मत या मेरी इम्तिहान ले रही है, तड़प कर या मुझे दर्द दे रही है, दिल से कभी भी मैंने उसे दूर नहीं किया है, दिल से कभी भी मैंने उसे दूर नहीं किया है, फिर क्यों बेवफाई के वो इल्ज़ाम दे रही है। तो हम चलते हैं एक गीत की ओर, वो है तेरी जाना दिल के, लेकिन चांदनी के पास हम जाते हैं। चांदनी क्या कहते हैं,

और मेरी चांदनी, अगर आप ऊपर देखोगे तो तुम्हारी चांदनी ऊपर आकाश में है या तुम्हारे बगल में है, ये तो आपके लिए हम छोड़ दे कि वो कहाँ है। तो दोस्तों कहते हैं पैगाम लिया है कभी पैगाम दिया है, पैगाम लिया है कभी पैगाम दिया है, आँखों ने मोहब्बत में बड़ा काम किया है, आँखों ने मोहब्बत में बड़ा काम किया है, कि कहते हैं अपनों के बीच बेगानी हो गए हैं। अपनों के बीच कभी कभी होता है दोस्तों कि जो सोचते हैं कि हमारा है उसके बीच में तुम बेगाने हो गए हैं, अपनों के बीच में बेगाने हो गए हैं, प्यार के लम्हे अनजाने हो गए हैं। जहाँ पर फूल खिलते थे कभी, जहाँ पर फूल खिलते थे कभी, आज वही वीराने, आज वही पर वीरान हो गए हैं। तो हम चलते हैं अपनी महबूबा के ओर, और आपके महबूबा कौन है वो तो आपके बगल में होगा, लेकिन यहाँ हम फिल्म धर्मवीर के बातचीत करते हैं, और धर्मवीर में ये माँ धर्मिंद्रा धर्मिंदर सिन्नत अमन और जोर तोर से इसमें काम किया है परमाश्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये सॉन्ग हम आप लोग को सुनाते हैं।

और ओ मेरी महबूबा, ओ महबूबा महबूबा में क्या क्या होता है, और गुस्सा होता है और प्यार भी उसी से ज़्यादा होता है। तो हम चलते हैं और आगे को अपना प्रोग्राम लेकर दोस्तों, की जाती है इस झील की गहराई, जाती है इस झील की गहराई कहाँ तक, यानी कि दीपता कहाँ तक जाते हैं, कि जाती है इस झील की गहराई कहाँ तक, आँखों में तेरी धूप के, आँखों में तेरी धूप के देखेंगे किसी रोज, आँखों में तेरी धूप देखेंगे हम और किसी रोज देखेंगे, और जो देखेंगे तो प्यार तो जरूर होता होगा, कि जो शख तेरे तस्वीर से ही महक जाए, जो तेरे तस्वीर से ही महक जाए, सोचो तुम्हारी दीदार में उसको क्या होगा। तो हम चलते हैं नाइटिंगेल लता जी के ओर, और इस फिल्म में राजकुमार नीतू ने काम किया है, फिल्म के नाम है अनारी।

और तेरा जाना ओ नैतिकी लता जी का ये गाया हुआ सॉन्ग है। हम चलते हैं और एक गीत को ओ लक्ष्मी के प्यारे लाल का गाया यानी बजाया हुआ सजाया हुआ ये गीत है मुकेश माइती मुकेश का गाया हुआ ये सॉन्ग फिल्म के नाम है जोंग मी तो दीवाना दीवाना और दीवाना फिल्म मिलन की ओर हम लेकर चलते हैं हमारे दोस्तों।

मैं तुभी दीवाना दीवाना और दीवाना हो चुका है। और हम चलते हैं कि कहते हैं महकता हुआ जिस्म तेरा गुलाब जैसा है, महकता हुआ जिस्म तेरा गुलाब जैसा है, नींद इसके नींद के सफर में तू एक ख्वाब जैसा है। दो घूंट पिला देना गो, दो घूंट पी लेना दे आंखों से पहले से, नशा तेरी आंखों में शराब जैसा। तो दोस्तों तो हम चलते हैं एक और सॉन्ग की ओर, और एक सुपर हिट बॉलीवुड सॉन्ग है जो एक इसको पहला पहला प्यार भी कहते हैं दोस्तों।

0: और पहला पहला प्यार तो सभी को होता है, और जिसे पहला प्यार होता है उसके तो मालूम है कि प्यार क्या बातचीत है, प्यार क्या होता है। तो कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, मोहब्बत का एहसास, मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों को हुआ था, मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों को हुआ था, फर्क सिर्फ इतना था कि उसने किया था और मुझे हुआ था। दोस्तों एक गीत की ओर हम जाते हैं। एक कोई ज़माना में ये फिल्म एक सुपरहिट फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन, जया प्रदा ने काम किया है, और ये फिल्म का नाम है शराबी। शराबी फिल्म के नाम है दोस्तों, लेकिन हम शराबी नहीं हैं, फिल्म का नाम है शराबी। तो आओ मिलकर सुना जाए किशोर जी और आशा भोसले का गाया हुआ, आशा भोसले को गाया हुआ ये गीत है।
1: ये क्या मजाक है विकी साहब?
2: मजाक? कैसा मजाक? हम तो यहाँ चुपचाप बैठे हुए हैं, हमारे आसपास भी कोई नहीं है, फिर हम मजाक किससे करेंगे?
1: वही तो मैं पूछ रही हूँ कि पब्लिक कहाँ है, ये हॉल खाली क्यों है?
2: हाँ, ये हॉल खाली क्यों है? वो आपके नटवर शाह साहब हैं, वो हमारे पास आए थे, कहने लगे आप जैसे कलाकार की हौसला अफजाई करनी है, तो हमने सोचा कहाँ वो दर दर टिकट बेचते फिरेंगे, सारे टिकट हम ही ने खरीद लिए।
1: बड़ी मेहरबानी की आपने, शायद आपको नहीं मालूम कि कलाकार सिर्फ तारीफ का भूखा होता है, पैसे का नहीं। तालियों की गूंज, लोगों की वाह उसके दिल के आह के निशान मिटा देती है।
2: वाह, तो बड़ी गहराई वाली बात कह डाली आपने, इतनी गहराई में तो हम कभी गए नहीं थे, ऊपर ही ऊपर तैर के निकलते रहे।
1: जो बात की गहराई को नहीं समझता वो किसी कलाकार की कला को क्या समझेगा? अगर आपको यही सब कुछ करना था तो किसी तवायफ के कोठे पर चले जाते, यहाँ आने की क्या जरूरत थी?
2: तवायफ? कोठा मतलब हम आपको कोठे पर जाने वाले लगते हैं। मीना जी, हम तो यहाँ आपकी हौसला अफजाई करने आए थे, आपने तो हमें जलील करके रख दिया।
0: कभी जिंदगी में किसी को जलील मत करना दोस्तों, जलील जब किसी को किया तो वो अच्छा बात नहीं होता है, किसी को जलील मत करना।

किसको कहते हैं सजना दीवानी के बात होते हैं। और आज आप लोग को हम क्या क्या सुनाएंगे दोस्तों, और हम चलते हैं एक गीत की ओर जिसका कहते हैं दीवांगनी के ओर हम जाते हैं कि दीवांगनी में एक लॉन्ग सॉन्ग है भाई, इसमें सैफ अहमद का गीत है, हम आपको सुनाते हैं।

0: वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनम कुर्मे देवा सर्व कार्यशु सर्वदा रुब्ररू मिलने का मौका नहीं पा रहा अतः शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमस्कार करता हूँ। फाउन रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए मैं हम सब यहाँ उपस्थित हो गए स्टूडियो में और कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश लेकर। आज का विषय जो अभी हमारे मास्टर जी जुड़ने वाले हैं भारत से, और हमारे साथ शांता खेमाई जी, अनुराधा जी, बबली जी भी उपस्थित है स्टूडियो में। तो हम पहले अपने मास्टर जी को जो भारत से जुड़ा हुआ है उनसे और अनुरोध करेंगे कि मास्टर जी अपना संदेश रखिए।
1: नमस्कार, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार। हर वीर बार की भांति इस बार भी हम उपस्थित हुए अपना कार्यक्रम लेके, जो कि कार्यक्रम का शीर्षक है गुरु की महिमा। गुरु की महिमा यानी पहले गुरु क्या क्या सिखाते थे और लोग क्या सीखते थे, उसी बारे में आज बातचीत रहेगा। और उसी जब लोग ये सब चीज सीखेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, तो उसका बड़ा ही प्रभाव पड़ेगा। तो इसके बाद बातचीत करते हैं, सब लोग अपना एंट्री डालेंगे।
0: तो मैं देख रहा हूँ बबली जी भी तैयार हो चुके।
2: भावना ही तो है जो दूर रहकर भी अपनों की नज़दीकियों का एहसास कराते हैं, वरना दूरी तो दोनों आँखों के बीच में भी है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।
0: और अनुराधा जी, आपका माइक इस समय भी ऑन हो चुके हैं, तो आप भी अपना संदेश रखिए।
3: नमस्कार, और मैं तो ये कहना चाहूंगी, हे परमात्मा, तुमने ही मुझे दरिया जैसा विशाल दिल दिया है। कोई मुझे नाराज करेगा तो चलेगा, लेकिन मेरी वजह से कोई दुखी ना हो, यही आपसे प्रार्थना है।

0: मेहनत करे तो धन बने, सब्र करे तो काम, मीठा बोले तो पहचान बने, और इज्जत करे तो नाम। आपको शांता की भी स्वीकार है यहाँ ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम में।
1: उदास बैठे उनके लिए कुछ उदासी का चलाया जाए।
2: जैसे आप कहिए राजेंद्र जी, मास्टर जी तो आप ही हो, और जैसे आप कह ही चुके हैं कि जो उदास बैठे हुए हैं अभी, क्योंकि अभी संदेश तो हम सब रखने वाले हैं, और आज का कार्यक्रम में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, और भी लोग भी सहयोग दे रहे हैं। तो मास्टर जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि हरिओम सरन जी ने, और ये तेरा राम जी करे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डड़े, तो हम उस गीत की ओर बढ़ेंगे, फिर कार्यक्रम में हम सभी जुड़ जाएंगे।

0: उदासी मन काहे को डरे। सुनने वालों, जैसे कि अभी आपने सुने ये सुंदर सा गीत जो जा कर के हरिओम सरन से हम सब सुने, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं मास्टर जी आपके, और संदेश जो आज आप रखने वाले हैं आप रख सकते हो।
1: जैसे कि बातचीत चली थी कि आज गुरु की महिमा के बारे में वर्णन होगा। गुरुकुल कैसे खत्म हो गए, जो पहले जमाने में गुरुकुल होते थे, जैसे भी स्कूल और कॉलेज विद्यार्थी और ये सब चीज चलता है, और पहले गुरुकुल होते थे, गुरु के सानिध्य में लोग पढ़ाई करने जाते थे और वहाँ से बहुत सारी चीजें सीखते थे जो कि उनके दिनचर्या यानी लाइफ पूरे लाइफ काम आती थी। तो क्या क्या सीखते थे ये सब चीज सीखने को मिलेगी। हमारे सनातन संस्कृति परंपरा में गुरुकुल में क्या क्या पढ़ाई होती थी, आर्यवर्त के गुरुकुल के बाद ऋषिकुल में क्या पढ़ाई होती थी, ये जान लेना आवश्यक है। इस शिक्षा को लेकर अपने विचारों में परिवर्तन लाए और प्रचलित भ्रांतियां दूर करें। भ्रांतियां का मतलब होता है कि जो कंफ्यूजन है आजकल जो चल रहे हैं उसको बोलते हैं प्रचलित भ्रांतियां, उनको दूर करें और पुरानी जो शिक्षा पद्धति थी उसके अनुसार अगर चलेंगे तो वैदिक शिक्षा यानी जो सबसे पुरानी शिक्षा थी, वैदिक शिक्षा बोलते हैं उसको, उसके अनुसार बहुत ही अच्छा रहता है। तो क्या क्या शिक्षा थी, नंबर एक पे है अग्नि विद्या, अग्नि विद्या सीखते थे गुरु के पास। फिर वायु विद्या, वायु मतलब एयर है, और जल विद्या पानी, अंतरिक्ष विद्या जो साइंटिस्ट आजकल स्पेस में है उनको अंतरिक्ष विद्या बोलते थे, बहुत पहले से सिखाई जाती थी। पृथ्वी विद्या एनवायरमेंट, सूर्य विद्या सोलर स्टडी होती थी, चंद्र व लोक विद्या लूनार स्टडी, मेघ विद्या वेदर फोरकास्टिंग, पदार्थ विद्युत विद्या यानी बैटरी, सौर ऊर्जा विद्या सोलर एनर्जी, दिन रात्रि विद्या दिन और रात्रि के बारे में जानकारी होती थी, सृष्टि विद्या स्पेस रिसर्च होता था, खगोल विद्या एस्ट्रोनॉमी, भूगोल विद्या जियोग्राफी, और काल विद्या यानी कि टाइम, भूगर्भ विद्या जियोलॉजी, और रत्न व धातु विद्या जेम्स एंड मेटल्स। ये सारी विद्याएं अभी हैं, लेकिन पहले ये गुरु एक ही गुरु के अनुसरण में सारी विद्याएं सीखी जाती थी। आकर्षण विद्या ग्रेविटी सिस्टम, प्रकाश विद्या सोलर एनर्जी, तार विद्या कम्युनिकेशन, जो कि जैसे तार पहले बोलते थे फोन से जो वो बातचीत करते थे उसको तार बोलते थे, अभी भी हमारे सूरीनाम के लोग फोन को जो हमारे मोबाइल फोन को उसको तार ही बोलते हैं, कि लेकिन वो पहले की विद्या।
0: तो राजेंद्र जी, जैसे आप कह रहे हैं कि अभी तक बिल्कुल आजकल जब मोबाइल का समय हो गया है और फिर भी लोग अभी कहते कि कोई तार करिस, घर पे आते हैं तो पूछते कोई तार करिस, तो यानी कि कम्युनिकेशन
1: है। पुरानी विद्या है ना, जब तार के माध्यम से पहले बात होती थी जब शुरू हुआ है, और जब एक तार दूसरे तार से जुड़ता था वायर यानी तब तार यानी वायर तब बात हो पाती थी, लेकिन आजकल फ्रीक्वेंसी के मोबाइल मतलब चलता फिरता उसमें ऑटोमेटिक वो तार की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो आप लोग बोलते हैं उसको तार ही बोलते हैं अभी भी। तो यानी वैदिक पुराने जो सिस्टम है उसी में चल रहा है। तो अच्छा, विमान विद्या प्लेन के बारे में बात होती थी, जलयान विद्या वाटर वेसल्स के बारे में बात होती, अग्नेय अस्त्र विद्या आर्म्स एंड एम्युनेशन के बारे में, जीव जंतु विज्ञान विद्या जियोलॉजी यानी बॉटनी, और यज्ञ विद्या मटेरियल सिख, यज्ञ विद्या यानी जो आप लोग पंडित लोग जो यज्ञ इत्यादि करते हैं उसके बारे में विद्या। ये तो बात हुई वैज्ञानिक विद्याओं की, जो वैज्ञानिक विद्या है इन ये सब बात है। अब बात करते हैं व्यवसायिक और तकनीकी विद्या की। जो वैज्ञानिक बात विद्या थी वो तो ये सब चीजें है, लेकिन अब व्यवसायिक जो वाणिज्य है, कृषि है, पशुपालन है, इसके बारे में बात है। तो वाणिज्य यानी कॉमर्स के बारे में कृषि एग्रीकल्चर है, पशुपालन एनिमल और पक्षी पालन वर्ल्ड कीपिंग, जो पक्षी रखते थे उसको पालने के उसको भी वर्ल्ड कीपिंग बोलते हैं, पशु प्रशिक्षण, एनिमल ट्रेनिंग के बारे में, और यान यंत्रकार यानी मशीनिकल के बारे में, मशीन्स जो होती थी, और रथकार व्हीकल डिजाइनिंग के बारे में, रत्नकार जेम्स जो अंगूठी के अंदर पहना जाता है उसको जेम्स रत्न बोलते हैं, जो पत्थर का होता है, सुवर्णकार ज्वेलरी डिजाइनिंग के बारे में, वस्त्रकार टेक्सटाइल यानी जो वस्त्र बनाते हैं उसके बारे में, कुंभकार पोएट्री, लोहकार मेटलर्जी, तक्षक रंगसाज डाइंग के बारे में, और खटवाकर रज्जूकर लॉजिस्टिक के बारे में, वास्तुकार आर्किटेक्ट के बारे में। अभी आर्किटेक्ट बहुत जबरदस्त चल रहा है क्योंकि वो वास्तुकार है, उसको आर्किटेक्ट बोलते हैं। पाक विद्या यानी कुकिंग, जो सब लोग घर में खाना पकाते हैं, बनाते हैं, एक दूसरे को खिलाते हैं, अपने घर में बुलाते हैं, आज मेरे यहाँ पार्टी कल, तो वो एक से एक खाना लोग चाहते हैं कि मैं अच्छा खाना बनाऊँ तो उसकी तारीफ हो, और उस बारे में बहुत पहले ही गुरु जी सब सिखा देते थे। तो पाक विद्या यानी हर किसी व्यक्ति के यहाँ भोजन बनता है और एक दूसरे को बुला के उसको खिलाते हैं और वो कहता है वाह बहुत अच्छा था, तो जो बनाने वाला है उसको उससे अच्छा लगता है, तो उसको बोलते हैं पाक विद्या। सारथ्या, सारथ्या बोलते हैं ड्राइविंग को, जो ड्राइविंग करते हैं। नदी प्रबंधक, वाटर मैनेजमेंट की बात है। सूचीकार डाटा एनर्जी, और गौशाला प्रबंधक एनिमल रखने के वाली जो पद्धति थी, जो गाय रखते थे उसको गौशाला प्रबंधक बोलते हैं। और उद्यानपाल हॉर्टिकल्चर के बारे में, जहाँ पे हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है कि बाग, बाग यानी बगीचा, फलों का बगीचा, उसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। और वनपाल जो जंगल में हॉर्टिकल्चर है, जंगलों में बड़े बड़े बगीचे लगाते हैं, उसको भी हॉर्टिकल्चर। नापित पैरामेडिकल जो नापते हैं। यह सब विद्या गुरुकुल में सिखाई जाती थी, पर समय के साथ गुरुकुल लुप्त हुए तो यह विद्या भी लुप्त हो गई। आज मैकाले पद्धति से हमारे देश के युवाओं का भविष्य नष्ट हो रहा है। मैकाले यानी जो एक अंग्रेज था, उसने एक शिक्षा बनाई, उसको मैकाले की शिक्षा बोलते हैं। उसने एक सिस्टम बनाया शिक्षा का, और उसने बोला ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उसी के अनुसार अभी भी चल रहा है, तो उसको बोलते हैं मैकाले पद्धति। तो ये सब अभी भी चल रहा है, और भविष्य जो है किस तरफ जा रहा है सब लोग जानते हैं। ऐसे समय में गुरुकुल पुनः उद्धार की आवश्यकता है। जब ऐसा एक समय आ गया तो गुरुकुल फिर दर्शाता है कि वैसे ही सिस्टम होना चाहिए था जो पहले था। तो क्यों ना एक सुंदर सा नगमा हो जाए संजय जी, और इसके बाद बातचीत जारी रहेगी।
0: जरूर राजेंद्र जी, हम सब जरूर एक सुंदर सा नगमा रख रहे हैं, और उसके बाद में हम सब फिर ये गुरु का शिक्षा जो आज हम सब के लिए आप रख रहे हैं और आगे को और बढ़ाएंगे।

0: सुनने वालों, जैसे कि अभी आपने सुने और जा कर के राजेंद्र जी जो हम सबके संदेश रख रहे और हमारे भाई नोनो जी जो रोटरडम शहर से फ़ोन किए, इस बात को सुन करके उन्हें भी और ये बात एहसास हो रहा कि बिल्कुल पहला के पहले के कितना चीज़ जो आज नहीं है और उस पर हमें और दृष्टि देना चाहिए। पर क्योंकि राजेंद्र जी अभी काफ़ी संदेश रखने वाले हैं, सभी सुनने वालों भी आप सुनते रहना। राजेंद्र जी, आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए।
1: जी, जैसे कि बात चल रही थी कि गुरुकुल में पहले क्या क्या एक ही गुरु सबकी सिखा देते थे और अभी तो अलग विषय का अलग गुरु और फिर अलग, जो एक चीज जानता वो दूसरी नहीं जानता, और पहले सब रकम का चीज एक ही गुरु सिखाए दे और सब लोग सीख जाए।
0: तो राजेंद्र जी, इस पे तो मुझे कुछ ख्याल आता है। हाँ। इस पे मुझे ख्याल आते हैं, आप जब यहाँ और हॉलैंड में भी एम्बेसी की ओर से थे और तो आप संस्कृत, हिंदी, योगा और अनेक अनेक यानी कि कितनी चीज भी आप भी सिखाते थे, तो इस प्रकार से।
1: हाँ, तो वहाँ पे जिस प्रकार का, क्योंकि मैं वहाँ पे टीचर ऑफ इंडियन कल्चर था, तो जो इंडिया के कल्चर है वो सब चीज सिखाना ही मेरा काम था और मैंने सिखाया, और इससे लोगों को अति फायदा भी हुआ, लोग सीखे भी, तो ऐसे होना चाहिए। ये वैदिक पद्धति थी, तो मैं वैदिक पद्धति से ही सब लोगों को पढ़ाता था और आगे भी पढ़ाएंगे। तो बात चल रही थी भारत में गुरुकुल कैसे खत्म हो गए, कॉन्वेंट स्कूलों ने बर्बाद किया। कॉन्वेंट एक यानी कि जो गवर्नमेंट, जो अंग्रेजों ने स्कूल बनाए, कॉन्वेंट बोलते हैं उनको, उन्होंने बर्बाद किया 1858 में, यानी 1858 में इंडियन एजुकेशन एक्ट बना। कब बना? 1858 में एक एक्ट बना, अंग्रेजों ने बनाया कि इसकी ड्राफ्टिंग लॉर्ड मैकाले ने की, जो लॉर्ड मैकाले है उसने ड्राफ्टिंग की कि कैसे भारत का जो गुरुकुल सिस्टम वो खत्म किया जाए और हमारी जो शिक्षा उसके अनुसार पढ़ाया जाए। लेकिन उसके पहले उसने यहाँ भारत के शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण कराया था। उससे पहले उसने क्या किया कि जो इंडिया में हमारे भारत में शिक्षा व्यवस्था थी उसका सर्वेक्षण किया, मतलब उसने देखा बारीकी से कि ये लोग कैसे करते हैं कि अभी तक हमारे कब्जे में पूरा नहीं हो पाया, इनकी वो है क्या, मेन खूबी क्या है। उसके पहले भी कई अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में अपनी रिपोर्ट दी थी। अंग्रेजों का एक अधिकारी था जी डब्ल्यू लूथर और दूसरा था थॉमस मुनरो, दोनों ने अलग अलग इलाकों का अलग अलग समय सर्वे किया। लूथर जिसने भारत, उत्तर भारत का सर्वे किया था, उसने लिखा है कि यहाँ 97% साक्षरता है, और मुनरो जिसने दक्षिण भारत का सर्वे किया था उसने लिखा कि यहाँ तो 100% साक्षरता है। यानी 100 में से जो लूथर था उसने अपने दक्षिण भारत की रिपोर्ट दी कि 100 में से 97 यानी 97% लोग शिक्षित हैं, और जो दूसरा था उसने कहा वहां तो सारे 100 के 100 हैं। मैकाले का स्पष्ट कहना था कि भारत को हमेशा हमेशा के लिए अगर गुलाम बनाना है तो इसकी देसी और सांस्कृतिक शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करना होगा और उसकी जगह अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी, और तभी इस देश में शरीर से हिंदुस्तानी लेकिन दिमाग से अंग्रेज पैदा होंगे, और जब इस देश की यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तो हमारे हित में काम करेंगे। जो मैकाले था उसने सोचा कि ऐसा तो इन पर राज नहीं किया जा सकता पूर्ण रूप से, लेकिन अगर शिक्षा पद्धति बदल दी जाए तो शरीर से इंडियन होंगे लेकिन दिमाग से हमारे हिसाब से काम करेंगे, इसलिए ऐसी इनकी शिक्षा पद्धति कर दो।
0: यानी कि उन्होंने अपना चालाकी भिड़ाया,
1: चालाकी शिक्षा से कर दिया उन्होंने। अभी भी लोग गुरुकुल में जो पढ़ते हैं उनका बुद्धि अलग होता है, और जो जो इंग्लिश और दूसरे स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं उनका बुद्धि अलग होता है, तो उससे पता चलता है कि गुरुकुल का विद्यार्थी है कि
0: कॉन्वेंट
1: का है, तो पता चलता है
0: भारत के।
1: हाँ, तो मैकाले एक मुहावरा इस्तेमाल कर रहा है मुहावरा यानी एक बोल है कि जैसे किसी खेत में कोई फसल लगाने के पहले पूरी तरह जोत दिया जाता है, वैसे ही इसे जोतना होगा और अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी। इसलिए उसने सबसे पहले गुरुकुलों की गैर कानूनी घोषित किया, यानी जो गुरुकुल है वो कानून के अनुसार नहीं, वो गैर कानूनी, ऐसा उसने घोषित कर दिया। जब गुरुकुल गैर कानूनी हो गए तो उनको मिलने वाली सहायता जो समाज की तरफ से होती थी वो गैर कानूनी हो गई। पहले क्या करते थे कि समाज कुछ ना कुछ शिक्षा पद्धति के लिए कुछ कोई खाना देता था, अन्न देता था, कोई पैसा देता था, ऐसे चलता था। लेकिन जब उसने गैर कानूनी कर दिया तो वो सब चीज कम होने लग गया। फिर संस्कृत को गैर कानूनी, जो संस्कृत भाषा है उसको बोला कि ये गैर कानूनी, कानूनी नहीं है, ये लॉ में नहीं है, और इस देश के गुरुकुल को घूम घूम कर खत्म कर दिया, उसमें आग लगा दी, उसमें पढ़ाने वाले गुरुओं को उसने मारा पीटा, जेल में डाल दिया। 1850 तक इस देश में 732,000 गुरुकुल हुआ करते थे, और उस समय इस देश में गांव थे 750,000, यानी हर गांव में एक गुरुकुल होता था, मतलब औसतन एक गुरुकुल होता ही होता था एक गांव में। वो सब के सब आज की भाषा में हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट हुआ करते थे, उन सब में 18 विषय पढ़ाया जाता था, और ये गुरुकुल समाज के लोग मिलके चलाते थे, न कि न राजा महाराजा। गुरुकुल में कितना विषय पढ़ाते थे, 18 विषय, 18 सब्जेक्ट पढ़ाते थे, और समाज के यानी सभी लोग उसको, गुरुकुलों को चलाते थे, राजा महाराजा लोग उसको नहीं चलाते थे, समाज के लोग चलाते थे। गुरुकुल में शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी। इस तरह के सारे गुरुकुलों को खत्म कर दिया गया, और फिर अंग्रेजी शिक्षा को कानूनी घोषित कर दिया, और कलकत्ता में पहला कॉन्वेंट स्कूल खोला गया। उस समय इसे फ्री स्कूल कहा जाता था। इसी कानून के तहत भारत में कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनाई गई, बम्बई यूनिवर्सिटी बनाई गई, मद्रास यूनिवर्सिटी बनाई गई, और ये तीनों गुलामी जमाने की यूनिवर्सिटी आज भी देश में है। यानी अंग्रेजों ने क्या किया कि जो शिक्षा प्रणाली थी उसको खत्म कर अपने अनुसार शिक्षा बनाई, और यूनिवर्सिटी भी चल रही, तो क्यों ना एक सुंदर सा नगमा की ओर बढ़ा जाए और फिर आगे की बातचीत महकाले की बात रखी जाए।
0: जरूर राजेंद्र जी, और हम एक सुंदर सा नगमा की ओर बढ़ेंगे और फिर अभी आपके साथ जुड़ जाएंगे।

0: सुनने वालों, जैसे कि अभी आपने गुरु के अंतर्गत जो संदेश सुन रहे हैं, राजेंद्र जी जो जुड़ा हुआ है भारत से और हमारे पास टेलीफोन आ रहे हैं, जिन्होंने इस बात को सुनकर उन्हें पुराने ख्यालों और आ गए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में अपने और नानी नाना आजी आजा को जो भारत से आए थे उनका संदेश सुने। पर संदेशों में संदेश क्या है राजेंद्र जी?
1: उनके जो आजी आजा भारत से गए थे और वो इसी गुरुकुल पद्धति से गए थे, तो आज का जो विषय है इसलिए उनको बहुत अच्छा लग रहा कि अगर यही पद्धति मेंटेन रहती तो आज हमारा देश जो पहले सोने की चिड़िया और विश्व गुरु था, अभी भी है, लेकिन उसकी ओर उसी पद्धति के अनुसार बहुत आगे बढ़ा जा सकता था। इसीलिए सब लोगों को ये चीज़ अच्छी लगती और फोन स्टूडियो में करके भी बताते हैं ताकि हम लोगों को पता चले। बात कर रहे हैं, मैकाले ने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी थी, बहुत मशहूर चिट्ठी है वो। उसमें वो लिखता है कि इन कॉन्वेंट स्कूल से पहले बच्चे निकलेंगे जो देखने में तो भारतीय होंगे लेकिन दिमाग से अंग्रेज होंगे, और इन्हें अपने देश के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इनको अपने संस्कृति के बारे में कुछ नहीं पता होगा, इनको अपने परंपराओं के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इनको अपने मुहावरे नहीं मालूम होंगे। जब ऐसे बच्चे होंगे तो इस देश में तो अंग्रेज भले ही चले जाए, इस देश से अंग्रेजियत नहीं जाएगी। यानी अंग्रेज चले गए लेकिन अपना वो नहीं छोड़ा, तो कहते आज भी कहते हैं कि अंग्रेज चले गए लेकिन औलाद नहीं छोड़ी, तो ऐसे बात करते हैं। उस समय लिखी चिट्ठी की सच्चाई इस देश में अब साफ साफ दिखाई दे रही है, और उस एक्ट की महिमा देखिए कि हमें अपनी भाषा बोलने में शर्म आती है। मैं देखता हूं कि कुछ लोग जैसे बच्चे स्कूल के आते हैं, हमारे साथ में भी अभी योग में आ रहे थे, तो उनको बोलते हैं कि 1 2 3 4 सौ तक गिनती आती, वो कहते नहीं आती है, और 1 2 3 4 तो वो कहते हाँ ये तो आती है। तो इस प्रकार की जो बात मैकाले जब कह रहा है और आज सिद्ध हो रही है तो साफ साफ देखने को मिल रही है। उस समय की जो चिट्ठी थी वो अभी एकदम साफ दिखाई दे रही है। अपनी भाषा बोलने में भी लोगों को शर्म आती है, अंग्रेजी में बोलते हैं कि दूसरे पे रोब पड़ेगा, हम तो खुद में हीन हो गए, जिसे अपनी भाषा बोलने में शर्म आ रही है दूसरे पर क्या रोब उसका पड़ेगा। लोगों का तर्क है कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, दुनिया में 204 देश हैं और अंग्रेजी भाषा सिर्फ 11 देशों में बोली और पढ़ी और समझी जाती है। जो हमारा रेडियो का प्रोग्राम है वो 188 देशों में सुनाई देता है।
0: जी हाँ राजेंद्र जी, 188 देशों में।
1: हाँ, लेकिन जो देश हैं दुनिया में वो 204 देश है, तो कुछ देशों में नहीं सुनाई देता क्या हम लोगों का जो प्रोग्राम है?
0: अब आजकल इंटरनेट के माध्यम से जो इंटरनेट से सुनेंगे तो सुन लेंगे,
1: वो उन देशों में भी सुना जा सकता है
0: जरूर।
1: और एक नया देश जो बना है कैलाशा, उसमें
0: कैलाशा देश के बारे में तो अभी तो हमने नहीं सुना है राजेंद्र जी, क्या उसके बारे में कुछ और संदेश है?
1: साउथ अमेरिका में एक स्वामी जी भारत के गए हैं, उन्होंने एक अलग से देश बनाया है, उसका नाम है कैलाशा। तो आप लोग इंटरनेट पे देख सकते हैं, उसका वीजा भी लगा है, पासपोर्ट भी बना है और सब प्रकार का सुझाव है वहाँ पे, उन्होंने अलग एक कंट्री नई कंट्री बनाई। लेकिन वो 204 देशों में आती कि 205 में आती है ये देखना पड़ेगा, ये विषय गूगल सिद्ध करेगा, गूगल बताएगा कि कौन से में आती।
0: जरूर गूगल महाराज से इसे और उस पे चेक करेंगे,
1: गूगल महाराज इसमें ज्यादा स्पष्टता बता पाएंगे।
0: सही बात।
1: फिर ये कैसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो 11 देशों में अगर है तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा 204 देशों में कैसे हो जाएगी, ये विषय है। संस्कृत भाषा जो है सबसे पुरानी भाषा है और उसको जो बोलता है एकदम शुद्ध और सटीक, तो वैसे ही वो शुद्ध व्यक्ति भी शुद्ध हो जाता है। शब्दों के मामले में भी अंग्रेजी समृद्ध नहीं, दरिद्र भाषा है, जो शब्द है उसके समृद्ध नहीं है, यानी हेल मोइ नहीं रही, वो हल्की दरिद्र सी है। इन अंग्रेजों की जो बाइबल है वो भी अंग्रेजी में नहीं थी, और ईसा मसीह जो अंग्रेजी नहीं बोलते थे, ईसा मसीह की भाषा और बाइबल की भाषा अरमेक भाषा की लिपि जो थी वो हमारे बंगला भाषा से मिलती जुलती है। यानी जो ईसा मसीह भाषा बोलते थे वो बंगाली जो भाषा हमारे देश की है उससे मिलती जुलती भाषा थी। समय के काल चक्र में वो भाषा बिल्कुल एकदम लुप्त हो गई, यानी अब वो भाषा नहीं रही। तो क्यों ना हम लोग को एक सुंदर सा संदेश की ओर बढ़े और फिर बातचीत जारी रही।
0: जैसे आप कहो राजेंद्र जी, शांता जी वही
1: जो नगमा है, शांता जी के पिटारे से निकला हुआ नगमा सुंदर ही होता है
0: हर वक्त हर समय। और उसके बारे में हमें कोई चिंता करने की बात नहीं।
1: हाँ जी,

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: हर काम के लिए, हर एडवर्टाइजमेंट के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी
2: संघ है अमेरिका में, वहां की भाषा अंग्रेजी नहीं है, यानी वहां की जो भाषा है वो फ्रेंच में है, और जो भी वहां पे काम काज होता है, समाज अपनी मातृभाषा से कट जाता है, तो फ्रेंच में सब भाषा बोलते हैं, वहां लिखी जाती है, उनका कभी भला नहीं होता। और यही मैकाले की रणनीति थी, जो अपनी भाषा में काम नहीं करता, बोलता नहीं, उनका भला नहीं हो सकता। और मैकाले भी यही कह रहा है, जिसमें लगभग वो विजय पा चुके, क्योंकि आज का युवा भारत को कम, यूरोप को ज्यादा जानता है, भारतीय संस्कृति को ढकोसला समझता है, लेकिन पाश्चात्य देशों को नकल करता। पाश्चात्य यानी जो विदेश है, भारत भारतीय देश है, वैसे जैसे वो करते हैं वैसे भारत भी, भारत के नए बच्चे लोग करते हैं, और अपने संस्कृति को, अपने सनातन धर्म को प्रमुखता और विशेषता को नहीं जानते हुए भी वामपंथी यानी जो भारत दूसरे देश की नकल करते हैं उनके समर्थन करते हैं। सभी बंधुओं से एक चुपता सवाल, हम सभी को धर्म की जानकारी होनी चाहिए, यानी हमारा जो वैदिक सिस्टम है, यानी पुरातन का जो सबसे पुराना सिस्टम है, उसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए, क्योंकि धर्म से ही हमारे राष्ट्र धर्म सिखाता है, और धर्म से ही हमें सामाजिकता सिखाती। धर्म यानी कोई, हम हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहे यहाँ पे, हम लोग बात कर रहे हैं एक वैदिक धर्म की, जो सबसे पुराना है उसकी बात चल रही है। धर्म सब में सामाजिकता सिखाता है, वैदिकता यानी सब सामाजिक एकजुटता रहती है, और इसी में हमारे माता पिता, गुरु और राष्ट्र के प्रति प्राण न्योछावर करने की प्रेरणा देते हैं। यानी जो हमारे गुरु थे, गुरु हैं, माता पिता हैं, उन्हीं जो यही बात करते हैं कि रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, पुरानी जो चीजें हैं वो मेंटेन रहे, चाहे तो प्राण ही क्यों ना चले जाए। और हम जो हमारा जो सनातन है यानी सबसे पुराना सिस्टम है, उसी के अनुरूप अगर चले तो वो एकदम वैदिक वेदों के अनुसार बनाया हुआ और सब एकदम साइंटिफिक है, उसके अनुसार अगर चलाया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये बातचीत हमारी आज जो गुरु की महिमा के बारे में थी, मुझे लगता है कि जो लोग इस चीज को सुने और समझे होंगे उनको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और संजय जी, आप इसके बारे में कुछ, 2 मिनट का समय है आपके पास, कुछ पूछना चाहते हैं तो इसको और ज्यादा क्लेरिफाई जस्टिफाई किया जाए।
3: राजेंद्र जी, पूछना क्या है, समस्त और यानी कि संदेश तो आपने रख ही दिए हैं, जो पहले और गुरुकुल में मिलता था, जो गुरु और जो लास्ट में जैसे कि आपने कहा कि गुरु माता पिता और गुरु बंधु, किस प्रकार से कि कैसे कौन गुरु है, अभी इसके बारे में और भी चर्चा किया जाएगा। क्यों ना हम न्यूज़ और कमर्शियल की ओर बढ़ते हैं, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।
2: जी जरूर।

0: जी संजय जी, इसके बारे में या अनुराधा जी आपको मैं बताती हूँ और पूछती हूँ कि जो हम स्कूल में ऐसे ही शिक्षा पाती हूँ ना, तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि ये है सिर्फ अपने परिवार को कुछ देने के लिए या अपने परिवार की सुरक्षा करने के लिए, पर जो ग्रंथों से हम शिक्षा लेते हैं तो उसको हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है?
1: आपने सही कहा शांता जी। मैं ये कहना चाहूँगी, देखिए हमारे जीवन में हमें ज्ञान तो बहुत जगह से मिलता है और गुरु ज्ञान गुरु से मिलता है, पर सबसे जो पहला ज्ञान हमें अपने जीवन में मिलता है वो है अपनी माता पिता से और अपनी माँ से। तो माँ ही हमार जो हैं जो हमारी मार्गदर्शन करती हैं। सबसे पहले हम जीवन में इस दुनिया में आते हैं तो माँ केवल शब्द मात्र नहीं है अपितु इसमें पूरा संसार समाहित है। माँ की जितनी भी हम व्याख्या की जाए उतनी कम है। माँ के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक माँ जीवन दाता होने के साथ साथ कई अन्य प्रकार के भी रोल निभाती हैं, जैसे जन्मदाता है माँ, पालनहार है माँ, प्रथम गुरु है माँ, माँ अच्छी दोस्त है, रक्षक है माँ और हमारी कोच है माँ। और इसी प्रकार से जीवन के हर मोड़ में माँ अनेक प्रकार से हमारे साथ रहती हैं। माँ हमारी माता होने के साथ ही वह हमारी प्रथम गुरु भी होती हैं। माँ के लिए, मेरे लिए अगर मैं माँ के बारे में बोलना चाहूँ तो मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। सभी ये इस बात से मेरे से सहमत होंगे कि हमारे जीवन में हमारे

ये गाना सुनाना चाहें हमारे सुनने वालों को। ये बहुत ही सुंदर गाना है, माँ मेरी माँ।

जैसे मैंने पहले बोला, माँ हमारी माता होने के साथ ही वह हमारी प्रथम गुरु भी होती हैं। माँ की आंचल में रहकर हम चलना और बोलना सीखते हैं। माँ हमें अच्छे संस्कार देती हैं। अच्छा, माँ हमें क्या सही है और क्या गलत उसकी पहचान करना सिखाती हैं। तो माँ का कितना एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे जीवन में, क्योंकि हमें प्राथमिक ज्ञान अपनी माँ से ही मिलता है। हम जो भी कुछ सबसे पहले सीखते हैं वह अपनी माता से ही सीखते हैं। इसलिए मैं इस बात को काफ़ी गर्व से के साथ कह सकती हूँ कि मेरी माँ ही मेरी प्रथम गुरु हैं। भगवान से ज़्यादा महत्व माँ का होता है। भगवान भी माँ की ममता पाने के लिए तरस जाते हैं। जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे जुबान में सबसे पहला शब्द माँ का ही आता है। हम कहते हैं हे माँ, ओ मम्मी, हम उन्हीं को याद करते हैं। तो माँ हमारे रग रग में रहती हैं। हमारे पूरा जो अस्तित्व है वो हमारी माँ से ही हमें मिलता है। इसलिए माँ को सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है। आप कह सकें तो माँ का दर्जा तो हम भगवान के बराबर, क्या भगवान से ऊंचा मानते हैं? तो क्योंकि माँ जो है वही हमें इस संसार में उन्होंने हमें लाया है। एक माँ और माँ के बच्चों का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है। एक माँ ही है जो अपने बच्चों के लिए दुनिया से लड़ जाती है, परंतु अपने बच्चों पर किसी भी प्रकार की संकट या आँच नहीं आने देती, ना बर्दाश्त करती है। इसलिए माँ का हमारे जीवन में सबसे ऊंचा स्थान है। एक माँ बच्चों के लिए बहुत कुछ करती है। माँ बच्चों को जन्म देते समय असहनीय पीड़ा को सहन करके बच्चे को इस दुनिया में लाती है। मैं खुद एक माँ हूँ, मेरी खुद दो बेटियाँ हैं। तो मैं जब अपनी बेटियों से कहती हूँ जब तुम माँ बनोगी तब तुम्हें पता चलेगा कि माँ बनना किसको कहते हैं। क्योंकि जब तक आप मेरी बेटियाँ जब हुई तभी मेरे को अपनी मदर की भी वैल्यू पता चलती है कि वो उन्होंने कितना कष्ट सहा जो हमें इस दुनिया में वो लाई। क्योंकि माँ हर कष्ट सह जाती है अपने बच्चों के लिए। वो हजारों कष्ट सहन करके बच्चों का पालन पोषण करती है तथा जीवन जीने की सही राह माँ ही हमें दिखाती है। इसलिए माँ के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उसे हमें ज़रूर पूरा करना चाहिए। हमारे माता पिता के साथ समय बिताना ये सब

से बड़ा हमारा कर्तव्य होता है हर बच्चे का। आप कहाँ भी हो, दुनिया के किसी कोने में हो, पर माँ बाप वो हमारे लिए हमारे भगवान के बराबर हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने माता पिता की हमेशा सेवा करें और हमेशा उनको सुखी रखें। ये हमारा पहला कर्तव्य है।

0: आकाश खेर ने अपने आवाज़ से ये सुंदर सा गीत हम सबको सुनाए और ख़ास करके अभी संदेश और आने वाले हैं। आप सुनते रहना और हमारे साथ जुड़े रहना, क्योंकि ज्योति का प्रकाश का लक्ष्य यही होता है कि हमारे जीवन का ज्योति जो जल रहा है उसमें थोड़ा से और प्रकाश आ जाए, और कार्यक्रम इसी का लक्ष्य यही है। दोस्तों, हम सब और संदेशों में संदेश जो अनुराधा जी जो रख रहे हैं, तो अनुराधा जी आगे अपना और संदेश रखिए।
1: मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चों को कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से हमारे माँ के दिल को ठेस पहुँचे और उनके आंखों में आंसू आए। माँ हमारे लिए कितना कुछ करती है। बचपन में जब बच्चा जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमारे लिए अपनी नींद गंवाकर हमें प्यार से लोरियां सुनाती है, हमारे लिए कितना कष्ट सहती है, दुनिया से लड़ जाती है। और जहां बच्चा या हम बच्चे जब होते हैं तो हम गिरते हैं तो माँ आकर हमारे आंसू पोंछती है और हमें प्यार से अपनी गोद में बैठाती है। तो वो माँ जब बूढ़ी हो जाती है जो और हम जवान हो जाते हैं तो हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम लोग भूल जाते हैं कि हमारे हमारा क्या कर्तव्य है हमारी माँ के लिए। और हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारी माँ के आंखों में कभी आंसू ना आए, उन्हें कभी अकेलापन ना महसूस हो। देखिए, ये बहुत ज़रूरी बात है कि जीवन में इंसान इतना व्यस्त हो जाता है अपने रोज के एवरीडे लाइफ में, कार करता अपने कार में, अपने रोज अपनी की फैमिली में, कि हम अपने माँ बाप को निग्लेक्ट कर देते हैं, भूल जाते हैं उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ करा है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने माँ बाप जब वो थोड़े ओल्ड हो जाते हैं उनकी हम सेवा करें, उनका ध्यान रखें। बहुत बार होता है कि हम लोग ऐसा नहीं कर पाते, हम दूर रहते हैं और आपके माँ बाप आपके करीब नहीं हैं, कहीं दूर दूसरी जगह में हैं, तो आप एक केवल उनको फ़ोन करके ही बात कर सकते हैं। आप अपने माँ को, आपको पता है एक माँ आपके उस फ़ोन कॉल के लिए कितना इंतज़ार करती हैं, कितना वेट करती हैं, वो उनके लिए कितना अनमोल समय होता है। जो आपके लिए तो हो सकता है कि आप इतनी बिजी लाइफ में आपके लिए टाइम ना हो, पर वो माँ आपका आपकी आवाज़ सुनने के लिए कितना तरसती है। तो मैं सबसे एक विनती करूँगी दर्शकों से जो सुन रहे हैं कि प्लीज़ ये प्रोग्राम जब ख़त्म हो जाए तो आप एक अपनी माँ को फ़ोन करके उनसे उनके हालचाल पूछ लीजिएगा, अपने फादर से, अपनी मदर से, और एक हेलो, एक सिंपल हेलो ही बहुत है, उनका दिल खुश हो जाएगा। और मैं यही विनती करूँगी कि देखिए, माँ बाप को हमेशा किसी भी कैसा भी ओकेजन आता है, यहाँ तो हम मदर्स डे बनाते हैं, फादर्स डे बनाते हैं, वो तो एक दिन होता है, पर माँ बाप के लिए मदर्स डे तो इट्स लाइक एवरी डे। वी शुड सेलिब्रेट पेरेंट्स हमारे लिए, जिन्होंने अपना जीवन इतने संघर्ष में, इतने डिफ़िकल्ट टाइम्स में उन्होंने हमें बड़ा करा। और कितनी मुसीबतें सही हैं, कम पैसे होने के बावजूद भी कभी आपको उन्होंने ये महसूस नहीं करने दिया होगा कि उनके पास पैसे की कमी है। या माँ ने, अगर आप खाना खा रहे होंगे तो आप कहेंगे माँ ये बहुत रोटी, ये सब्जी बहुत अच्छी बनी है, हो सकता है वो सब्जी बस लास्ट थोड़ी सी बची हो और माँ ने खाना भी निकाला हो, कहेंगे हाँ बेटे बेटी खा लो, आप ये भी खा लो, कहेंगे अच्छा एक और रोटी खा लो, भले ही वो माँ सब्जी भी ख़त्म हो गई हो या रोटी भी ना हो, तो वो आपको कभी भी ये महसूस नहीं होने देंगी कि वो भूखी है। अगर सब्जी ख़त्म भी हो जाएगी तो वो कहेंगी, आप अगर अपनी मम्मी से पूछेंगे आपने खाना खाया, हाँ हाँ नहीं नहीं नहीं मेरा तो बहुत पहले ही से पेट भरा हुआ है, आज मेरा मन नहीं है खाने का। तो ऐसे माँ ऐसी होती हैं जो अपने बच्चों के लिए कितनी ही सैक्रिफाइसेस करती हैं। तो हमें, हमारा कर्तव्य है कि अपनी माँ, अपने पिताजी, हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमारे सबसे गुरु हैं, सबसे बड़े लाइफ में, तो हम उनकी हमें अपने जीवन में हमें उनका उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनको रिस्पेक्ट हमेशा देना चाहिए। चाहे आप पास हों, जो लकी होते हैं, जो जिनके माँ बाप उनके पास रहते हैं और उनको जिनको सेवा करने का मौका मिलता है, उनसे भाग्यशाली तो कोई और नहीं हो सकता। पर बहुत सारे हैं, जैसे मैं यहाँ पर नेदरलैंड्स में हूँ, हॉलैंड में, और मेरे माँ बाप मेरे इंडिया में रहते हैं, भले ही वो दूर रहते हैं, पर मैं हमेशा, मैं उठते ही सबसे पहले भगवान की नाम लेकर अपने माँ बाप को सुबह सुबह सबसे पहले एक फ़ोन मिलाती हूँ हाल चाल पूछने के लिए, चाहे भले ही वो 5 मिनट का होता है, पर उनसे बस ये पूछने के लिए कि उनकी रात अच्छी बीती, अच्छा, और आशा करती हूँ उनका दिन भी अच्छा जाए और उनकी तबीयत ठीक रहे, सब है। तो वो बस 5 मिनट का हमारा रहता है, मेरी माँ कोई ऐसा कुछ खास नहीं बोलेंगी, पर उनकी आवाज़ सुनकर, वो हमारी आवाज़ सुनकर उनको ये हो जाता है कि हाँ बच्चे ठीक हैं, सब ठीक है। वो तो बस एक छोटी सी विनती है कि देखिए, अपने माँ बाप को हमेशा अपनी पलकों में बैठाएं और हमेशा उनकी देखरेख करें, उनकी देखभाल करें।

0: श्री गुरु की आज्ञा पालन हेतु स्वयं को झोंक देने वाला शिष्य अरुणी। प्राचीन समय में धौम्य नामक मुनि का एक आश्रम था। उस आश्रम में अनेक शिष्य विद्याभ्यास के लिए रहते थे। उनमें अरुणी नामक एक शिष्य था। एक समय धुआंधार वर्षा होने लगी। समीप के नाले का पानी खेत में न जाए इस हेतु प्रतिबंध लगाने के लिए वहाँ एक बांध बनाया गया। उस बांध में दरारें पड़ने लगीं। तब गुरुदेव ने शिष्यों से कहा, पानी को खेत में आने से रोको। अरुणी एवं कुछ शिष्य बांध के समीप आए। बांध में आई दरारों को भरने के लिए सबने प्रयास किया, किंतु पानी का वेग अत्यधिक होने के कारण संपूर्ण प्रयास निष्फल हो गए। बांध के बीच का भाग टूटने लगा एवं पानी धीरे धीरे खेत में आने लगा। अब कोई लाभ नहीं, ऐसा सोचकर सभी शिष्य लौट आए। दिन भर परिश्रम करने से थके सभी शिष्य गाढ़ी नींद में सो गए। सवेरे तक वर्षा थम गई। तब सबके ध्यान में आया कि अरुणी का कोई पता नहीं है। संपूर्ण आश्रम में ढूंढने पर भी जब वह नहीं मिला, तब वह सभी गुरुदेव जी के समीप आकर बोले, हे गुरुदेव, अरुणी खो गया है। श्री गुरु बोले, हम खेत में जाकर देखेंगे। सब शिष्य एवं ऋषि धौम्य खेत में गए और उन्होंने देखा कि टूटे हुए बांध के बीच में पानी को रोकने हेतु स्वयं अरुणी ही वहां आड़ा होकर सोया हुआ है। यह देखकर सबको आश्चर्य हुआ। रात भर पानी में भोजन नींद के बिना ऐसा करते देख अरुणी के प्रति सभी के मन में प्रेम भाव निर्माण हुआ। वर्षा रुक जाने के कारण पानी का बहाव तो पूर्व की अपेक्षा घट गया था, परंतु अरुणी को वहाँ नींद लग गई थी। सभी वहाँ गए और उसे जगाया। श्री गुरु ने उसे समीप लेकर प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरा। यह देखकर सब शिष्यों की आंखों में पानी आ गया। बच्चों, अरुणी से हमें क्या सीखना है? तो श्री गुरु की आज्ञा पालन करने की तीव्र उत्कंठा। आज्ञा पालन करने के लिए अरुणी ने स्वयं का विचार नहीं किया, इसलिए वह गुरु का एक सच्चा शिष्य बना। अतः हम भी हमारे गुरु के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि हे गुरुदेव, हमें भी आज्ञा पालन गुण निर्माण हो, हम भी गुरु की आज्ञा का पालन करें।
1: सुनने वालों, जैसे कि अभी आपने सुने और बबली जी ने अरुणी नाम के एक शिक्षक का और संदेश, जो गुरु का पालन करने से और क्या प्राप्त होता है, और हम एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे। फिर कार्यक्रम में देखा जाए कि और संदेशों में संदेश क्या है। आज जबकि गुरु का विशेषता रखा गया 23, तो उसी में हम सब संदेश रखने वाले। पर सुनने वालों, ये मत भूलना कि बुढ़ापा जो आ गया है तो आपको भी कुछ नहीं करना है। उस अंतर्गत में भी कुछ संदेश अभी रखा जाएगा। तो बुढ़ापा का अंतर्गत जो अभी कुछ संदेश रखा जाएगा, वो भी आप गौर से सुनना, क्योंकि हमारा लिखा हुआ नहीं है, ये तो औरों को लिखा हुआ। पर जो लिखते हैं ना, तो उसे भी भगवान का, और यानी कि स्क्राइफर जो होते हैं, तो उसे वो कला होते हैं, और उस वो अपना कला को और यानी कि लिपि में रख देते हैं, यानी कि लिख देते हैं। तो शांता जी, एक गीत के बाद और फिर हम सब ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम लेकर उपस्थित।

0: ये सुंदर सा गीत जो हम सब फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा यहाँ डनहाग शहर हॉलैंड से ब्रॉडकास्ट किया गया। दोस्तों अभी आपने सुने और जा कर के अनुराधा जी और बबली जी भी गुरु का और महिमा जो और राजेंद्र जी जो भारत से हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी संदेश जो रखा गया आज के कार्यक्रम में ज्योति का प्रकाश में। पर ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा बबली जी की बुढ़ापे में आराम से और रहने हेतु कुछ सुझाव कहे गए हैं, क्या उसके बारे में आपको पता है कुछ?
1: अभी तक तो नहीं पता, अगर आप बताएंगे तो शायद पता चल जाए।
0: अभी आप कह रहे नहीं पता है, अभी तो बुढ़ापा दूर है ना आपका?
1: लेकिन ये थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया है, कभी पैर में दर्द होता है, थोड़ा चलो तो घुटने दुखने लग जाते हैं।
0: तो ये तो होता है कि स्पोर्ट करना, क्योंकि एक दिन में हमें कितने अवस्था पर रखना है, कम से कम
1: 6,000।
0: शांता जी कहते हैं 6,000 स्तप जो हमारे और लिए वैज्ञानिक लोग खोज करके रखे हुए हैं कि एक दिन में 6,000 स्तप हमें रखना चाहिए। तो अनुराधा जी क्या आप इस पे ध्यान देते हैं कि नहीं?
2: देखिए संजय जी, मैं ये कह सकती हूँ कि हॉलैंड में आने के बाद मैं अपने आप को चाहती हूँ कि मैं बुढ़ापे में भी फिट रहूं, तो इसलिए साइकिलिंग करती हूं, सुबह योगा करती हूं, मेडिटेशन इज़ वेरी गुड। और आप वो सब भी ना करें तो घर में ही आप थोड़ा सा चल फिर लें तो वो बहुत फ़ायदा करता है।
0: तो सुनने वालों, जैसे कि अभी आप सुन रहे हैं कि हमारे जो सहयोगी साथी होते हैं वो लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और शांता जी तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा और चलता है, 6,000 स्तापों से ज़्यादा ही एक दिन में चल जाते होंगे। पर शांता जी माइक्रोफोन तो थोड़ा दूर से है।
1: बिल्कुल सही कहा संजय जी ने आपने, पर आपको कैसे पता चला?
0: क्योंकि यहाँ हमारे पास एक संदेश लिखा गया कि 14 बातें जो हमें बुढ़ापा जो आ जाए तो उस पर ध्यान देना, यानी कि सुझाव। तो पहला है कि कम बोलना चाहिए ना, क्या इस पर आप लोग के क्या राय है?
2: ये मैं कह सकती हूँ कि भले ही कम बोलें पर सुनने की सहनशीलता होनी चाहिए, लोगों की बातें आप सुने और कम बोलें, और भजन सुने, अच्छी अच्छी बातें सुने, अपनी एनर्जी फालतू की चीज़ों में ना व्यस्त करें। बस
0: कहने के तात्पर्य यह है कि दूसरा संदेश में ये लिखा गया कि खाने पीने में और संतोषी रहे, यानी कि जो गोल गप्पे का इच्छा होता है और छोले भटूरे का इच्छा होता है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। बबली जी इस पर आप, मैं देख रहा हूँ तैयार हो गए कुछ कहने को, कह दो।
1: क्योंकि खाने पीने में बुढ़ापे में मिर्च मसाले वाली चीज़ें, तेल वाली चीज़ें कमती खानी चाहिए। मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा खाएँगे तो पेट गड़बड़ा जाएगा, और नमक तेल ये भी कमती खाना चाहिए।
0: तो यानी कि अपना खाने पीने पे थोड़ा से ध्यान देना चाहिए।
1: हाँ जी।
0: तीसरा कहा जाता है कि प्रभु का स्मरण अवश्य करें, तो जैसे कि अनुराधा जी ने अभी कहा कि वैसे ही करना चाहिए ना?
1: प्रभु का स्मरण तो जरूरी बुढ़ापे में ही करें, वो तो बचपन जवानी बुढ़ापा तीनों जगह पे कर सकते हैं।
0: तो शांता जी इस पे क्यों ना एक गीत चला देते हैं?

0: तो सुनने वालों, जैसे कि अभी आपने और गीत के माध्यम से भी सुने कि माला जाप करना ये कोई बुरा काम नहीं है, अगर आपसे हो सके तो करते रहना। पर चौथा है प्राकृतिक और जीवन शैली अपनाइए, यानी कि प्राकृतिक यानी कि जो नेचर वाला जीवन है, जीवन जो नेचर को और उसे वारदेर करे ना शांता
1: जी।
0: और उसके बाद में कहा जाता है कि इस पे भी जरूर ध्यान देना चाहिए कि बहू बेटी के कार्य में दखल ना दे बुढ़ापा जो आ गया था।
1: बिल्कुल सही।
0: तो ऐसा भी क्योंकि ये हमारे लिखे हुए नहीं है शांता जी, हमारे जो संत मुनियों के लिखे हुए बातें, इस पे हमें जरूर ध्यान देना चाहिए
1: क्योंकि ये अनुभव किया हुए बात है ना।
0: अनुभव यानी कि एरफारिंग लेयर फंदत दत मुतवाइनी दुन। इसी प्रकार से हमें मन चाही वस्तु और मिलने पर क्रोध ना करे, यानी कि जो मन चाहते हैं और वस्तु ना मिले तो जैसे कि हमें गुस्सा चढ़ जाता है जल्दी जल्दी, वो ना करना चाहिए ना। अनुराधा जी, इस पे क्या संदेश है आपका?
2: मैं ये कहना चाहूँगी कि इंसान को जैसे हम अपना हमारी उम्र बढ़ती रहती है तो हमें अपने क्रोध पर काबू करना चाहिए और शांत स्वभाव अपनाना चाहिए। देखिए बहुत बार थोड़ा सा 5 मिनट शांत रहने से ही कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या आप 5 मिनट शांत होकर उसको सह लें, ना जवाब दें, तो देखिए एकदम से घर गृहस्थी कितनी अच्छी चलती है। तो शांत रहना मेरे लिए बहुत जरूरी है।
0: तो जैसे कि और अनुराधा जी ने कहा कि शांत हो जाओ, शांत रहना ये बहुत ज़रूरी है। अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने की कोशिश और ये बुढ़ापा पे भले ना करें ना इच्छाओं को, जो क्योंकि इच्छाओं जितना है जितना जल्दी जितना ज़्यादा इच्छाओं होते हैं कोशिश करना उसे, और
1: जब तक
0: हाथ पाँव चलते हैं खूब चलते रहे और करते रहे आगे बढ़ते रहे।
1: कारण कि बुढ़ापा और जब बुढ़ापा आ जाता है ना तो हमारे आगे नवयुग जो रहते हैं बेटा बेटी जो है तो मेनिंग फर्स्केल हो जाता है,
0: क्योंकि एक राशि के फर्स्केल हो जाता है।
1: फर्स्केल हो जाता है तो बच्चे जो उनका दिमाग ही कुछ और सोचते हैं, और हमारा दिमाग जो हमारा एरफारे दिमाग है तो हम सब देखते हैं कि ना ये गलत है ये सही है। तो इस पर जो हम ज़्यादा बच्चों पे जो रोक टोक करेंगे तो बच्चे इस पर नाराज हो जाएंगे, और जब नाराज हो जाएंगे तो आप बुढ़ापा पे तो आपको तो एक किनारे छोड़ देगा।
0: और यहाँ हम सब ज्योति का प्रकाश में ये संदेश डाले जाते हैं कि आप कम से कम और उस पे ध्यान देना। और दोस्तों सुनने वालों, जो आठवां संदेश है, अपनी धन संपत्ति का बार बार बखान ना करें, क्योंकि आपने मर्सिडीज खरीदे, आपने बड़े बड़े दुकान खरीदे, आपने बड़े बड़े जमीन खरीदे, पर बुढ़ापा पे सबको धीरे से और बखान ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ये ऐसा लिखा गया है। और अपने परिवार के और समस्याओं दूसरों के सामने ना रखनी चाहिए, तो ये तो एक ऐसा बात है ऐसा नहीं करना चाहिए। बबली जी आगे को और क्या संदेश है?
3: आगे का संदेश नंबर 10, घर पर आए व्यक्ति से अपने घर की कोई बुराई ना करें।
0: तो बुराई नहीं करनी चाहिए,
1: तो ये सिर्फ जो व्यक्ति जो बूढ़े है उसको नहीं, सिर्फ ना सिर्फ
3: सही बात शांता, ये सबके लिए है। नंबर 11, अपने स्वास्थ्य के अनुसार घर के कामों में सहयोग करें।
0: तो घर के काम में सहयोग करें, यानी कि स्टॉफ साइकर अभी भी चलाना चाहिए जब हो पावे तक,
1: तंदुरुस्ती के लिए ठीक है।
3: जरूरी नहीं शांता, स्टॉफ साइकर सब्जी काट सकते हैं बैठे बैठे, और बर्तन साफ कर सकते हैं बैठे बैठे, कुछ भी जो हल्के फुल्के कार्य हैं वो कर सकते हैं।
0: ऐसे इस बात को सुन करके मैं यह मेरा आजी का ख्याल आ गया, वो सूरीनाम से आते थे और बैठे बैठे रसोई में और सब सब्जी काट देते थे, और उसका बस यही ख्याल आ गया।
3: मेरी मम्मी खुद, अगर मेरी मम्मी कुछ और नहीं कर पाते थे तो बैठे बैठे प्याज लहसुन काट दूँ, सब्जी काट दूँ, और ऐसे करते रहते हैं।
0: यानी कि सहयोगी सहयोग देते,
3: कपड़े तय लगा के रख दूं, यानी कपड़े सूख गए लाओ उतार दो, मैं चपत के रख दूं, कोई कहीं से कटा फटा कपड़ा है उसको बैठे बैठे सुई धागे से सिल देते थे।
0: तो दोस्तों ये है, और कुछ बुढ़ापे, जब बुढ़ापा आ जाए तो कुछ संदेश, और इन सब बातों को आपको पता है, फिर भी हमारे लिए कुछ संदेश यहाँ रखा जाता है और हम फिर दोबारा आपके साथ और उसे बांटते हैं।
3: नंबर 12, बुढ़ापे में कष्ट को कर्म फल समझकर खुशी खुशी सहन करें।
0: तो बुढ़ापे में कष्ट को कर्म फल और समझकर खुशी खुशी, पर हर बात तो खुशी खुशी नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि कुछ कुछ होता है कि जहां आपको दवा लेना पड़ेगा और रोज सुबह समय पे और शाम में समय पे, पर कहने के तात्पर्य यह है कि कर्म का फल, क्योंकि एक बार रेडियो से हम लोग बात कर रहे थे तो किसी ने कहा था ये बंद आर्किटेक्ट फॉर योरसेल्फ, आप जो बनाएंगे जो बोएंगे वो तो एक ना एक दिन काटना पड़ेगा। तो अभी हम सब और जो संदेशों में 14 संदेश जो रखा गया है कि बुढ़ापा आने पर उसका और हेतु सुझाओ, तो अनुराधा जी और 13वां और संदेश में क्या लिखा गया
2: जी? तो हमें बुढ़ापे में यह आशा ना करें कि हर काम हमसे पूछ कर ही किया जाए, तो ये सही कहा है, क्योंकि सब परिवार में सबको हमें उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और बच्चों की भी सुननी चाहिए।
0: ये बात हो जाता कि हाँ ऐसा ना हो कि हमसे सब कुछ पूछ कर करना चाहिए, नहीं।
2: और जी आखिरी सुझाव है, ध्यान रखें कि प्रभु की कृपा से ही सब कुछ प्राप्त हुआ है, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है, सुखी और निरोगी रहिए, यही मेरी कामना है, यही मैं चाहती हूँ, यही आप लोग के बुढ़ापे में से आराम से रहने हेतु सुझाव।
0: तो सुनने वालों, ये बात जो 14 संदेश जो रखा गया आपके लिए, और मैं देख रहा हूँ शांता जी कुछ और बटन दबाने का कोशिश कर रहे हैं, चला दो शांता जी।

0: इस संसार में सब कुछ संभव है अगर शुरुआत आत्मविश्वास से हो। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।
1: तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं, कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। और मैं हूँ अनुराधा, बहुत बहुत नमस्कार। और

बहुत धन्यवाद फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी श्रोताओं को जो कि हर बार प्रोग्राम को अपने समय निकाल कर सुनते हैं और आगे भी सुनते रहेंगे। आज जो वृतांत, अलग अलग प्रकार के वृतांत सुने, उन वृतांतों को मनन करेंगे और कुछ ना कुछ सीखेंगे। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए सबको नमस्कार।

0: सुनने वालों, आपने सुने ज्योति का प्रकाश। कहूँगी ये ज़रूर कहूँगी कि हर पल का आनंद जरूर से लेना, हर पल का आनंद जरूर से लेना, क्योंकि खुशियाँ कभी किसी का इंतज़ार नहीं करते। स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरी। राम राम।
1: जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं, तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ सहयोग दिए शांता खेमई जी, अनुराधा जी, बबली आसरा जी और राजेंद्र सिंह जी। मैं हूँ आपका सेवक संजय और आशा ये रखता हूँ कि कुछ न कुछ संदेश आपके पास जरूर पहुँचे होंगे। लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी रहेंगे तो मिलेंगे, मगर एक अच्छे सच्चे दोस्त ने कहा है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। सभी को नमस्कार।

उदित नारायण जी और अलका याग्निक मिल के आपको सुनाएं यार बदलना जाना मौसम की तरह, क्योंकि कभी कभी प्यार करने वालों में यही डर रहता है कि ऐसा हो जाए, लेकिन होना तो नहीं चाहिए लेकिन कभी कभी ये भी हो जाता है। चलिए फाओ हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चून है तो प्यार मोहब्बत की बात अगर जो हो ही रहा है तो चलिए सुनते हैं बप्पी लहरी जी अपनी साज में आपको क्या सुना रहा है।

तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। ये शानदार गीत फिल्म मनोकामना में से निकाले हैं और बप्पी लहरी के साज पर बप्पी लहरी खुद ये गीत पेश किए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। जबकि आप भी हैं, मैं भी हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं चला रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ आपको अवश्य अच्छा लग रहा होगा। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, तो क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये सुनाऊँ।

तुम चैन हो, करार हो, मेरे इश्क हो, मेरे प्यार हो। जहाँ तक मेरा ख्याल है, म्यूज़िक डायरेक्टर ने इस गीत में यही सोचा होगा कि इसमें ना ड्रम बजाऊँ, ना तबला बजाऊँ, ना ढोल बजाऊँ, बस वायलिन और गिटार से काम चला लिए है। फ़ौन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा यह गीत हम भी आपको सुनाए हैं। वैसे तो कितने गाने में ड्रम और तबला कम बजे हैं, बिल्कुल नहीं बजे रफ़ी साहब के गाने में भी, लेकिन इस गाने में भी जहाँ तक मेरा ख्याल है, उन्होंने उन लोगों ने फैसला की चलो अब की बार कुछ नहीं बजाते हैं। चलिए हम आपको सुनाते हैं कार्यक्रम में ये गीत।

www.faunfm.nl पर आप चून हैं। जो लोग चून किए मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। कार्यक्रम पे आप चून हैं, एक शुभ समय पेश करते हुए चलिए हम आपको ये गीत सुनाते हैं। इस तरह से आ रहा

1981 का ये गीत, जी हाँ, फिल्म दर्द में से निकाल कर हम आपको सुनाए हैं, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। अगर प्यार ही मोहब्बत की बात चल ही रहा है, जी हाँ, तो चलिए नए पुराने गीतों के संगम में हम आपको ये सुनाते हैं। के आपको सुना रहा है, यानी किशन कुमार।

ये ख्वाहिश तो हमेशा रहता है ना प्यार करने वालों का कि तू किसी और को चाहे, ये खुदा ना करे। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, और क्या ख्याल है बाबुल सुप्रियो, और देखते हैं। हाँ, बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक।

प्यार करके देखो ना, ये गीत सुनाया गया फोन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में है। चलिए अगला गीत हम आपको क्या सुनाएं, चलो ये सुनते हैं, इस तरह से आ रहा है।

नए गीत पुराने गीतों की मेल में एवरग्रीन किशोर कुमार जी और लता जी, ये दोनों मिल के आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की आपकी आप ही के लिए शुभकामना के साथ। चलिए, क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको सुनाऊं आशा जी और कुमार सानू? जी हाँ, आशा जी कुमार सानू आपको क्या सुना रहे हैं?

क्या बात है, बाबुल सुप्रियो और आयशा जी मिलके आपको सुनाए हैं, सबसे प्यारा है, वाह क्या बात है। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, ये बहुत प्यारा नंबर ये भी है एक।

तुम्हारी मोहब्बत बहुत याद आई, प्रेम प्यार मोहब्बत की बातें जबकि हो रहा है, हमने ये गीत पेश किए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए एक बार फिर हम आपको सुनाते हैं राहत फतेह अली खान।

प्यार भरी मस्त भरी गीतों से आज भी आप लोग को हम पुराने गाने कुछ भी नए गाने से आपको हम सेवा करेंगे। चलते हैं भीगी रात नेक डिफेंस का ओल्ड सॉन्ग परमा श्री मोहम्मद रफी करोड़ों का दिल चुराने वाली नाइटिंगेल लता मंगेशकर आशा भोसले इस फिल्म में मीना कुमारी काम किए हैं और अशोक कुमार। आओ मिलकर सुना जाए।

और भीगी रात 1965 का ये फिल्म है दोस्तों। हम और आगे को लेकर अपना प्रोग्राम को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों हम अपनी गीतों को और आगे को बढ़ाते हैं, हम चलते हैं। यूं ही तुम मुझसे बात करते हो, अगर बात करना है तो दिल से करो, ऊपर मन से करोगे तो कुछ मिलेगा नहीं। नेहती जीवन का ही फिल्म है, फिल्म के नाम है सच्चा और झूठा, जिसमें राजेश खन्ना मुमताज ने काम किए हैं। आओ सुना जाए।

और क्या बात करती हो राजेश खन्ना का और मुमताज का ये रोमांटिक सॉन्ग यानी फिल्म थी। और दोस्तों आज हम आप लोग को फिर भी रोमांटिक प्यार भरी गीतों की सॉन्ग आपके हम सुनाएंगे और रेडियो फहम के माध्यम से इस प्रोग्राम को हम प्रस्तुत करते हैं। और दोस्तों देखा जाए और कितनी दिनों बाद आज हम आप लोग को फिल्म पकीसा का एक गीत सुनाएंगे। और ये फिल्म एक सुपरहिट फिल्म थी जिसमें मीना कुमारी, राजकुमार, अशोक कुमार ने काम किए थे। और आज हम आप लोग को इस गीत को कितने दिनों बाद सुनाएंगे। नीहती हों का ये सॉन्ग है।

आगे को बढ़ते हैं, कहते हैं कि ये हम तुम चोरी से और चोरी में छिछोरी हो जाते हैं और तोरी में क्या क्या ना हो जाते भैया, चोरी में क्या क्या ना हो जाते हैं। और ये है फिल्म धरती कहे पुकार का ये सॉन्ग है जिचिंदर नंदा और नाइटिंगेल लता जी और करोड़ चुराने वाला मुकेश माइती मुकेश का ये सॉन्ग है। आओ सुना जाए।

और ये तुम जो हम तुम चोरी से और बने भी है कौची एक डोरी से जइयो कहाँ रे हुजूर। उसके बाद में हमारे दोस्तों आप लोग जानते हैं हमारा प्रोग्राम का नाम है सच्चाई मजेदार समाचार, जो हर शुक्रवार को शाम को 6 से 7 बजे तक हम 6 से 9 बजे रात्रि तक चलाते हैं, मंगलवार को 5 से 7 बजे तक और रविवार को दिन में 1 बजे हम अपना यानी प्रोग्राम को चलाते हैं। और इसके बाद हम चलते हैं कौन दिशा से मैं लेके चला रे भतुया, नदिया का पार नदिया के पार फिल्म के नाम है। हेमलता जसपाल सिंह इस गीत को रविंदर जैन के सॉन्ग में और इस गीत को गाया है, एक बहुत मस्त भरी प्यार भरी गीत है। फिल्म के नाम है नदिया के पार नेह दिन होंदित एंतुन तख्त का ये गीत है। और आओ मिलकर ये गीत को सुना जाए, ये गीत हमें बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। हमें ही आशा उम्मीद है कि आपको भी ये गीत अच्छा जरूर लगेंगे। आओ सुना जाए।

0: और मन ने भरमाई और जाकेरी बतसुइया कौन दिशा में लेके चला री बतुइया। नदिया कपारी फिल्म का नाम है। हेमलता इस गीत को गाया है और हम चलते हैं दोस्तों अपना प्रोग्राम लेकर आगे। और ये है इस फिल्म किशोर जी का गाया हुआ ये सॉन्ग है और आओ मिल का सुना जाए कौन सा फिल्म का गीत है अभी हमें पता चली गई तो हम आप लोग को बताएंगे दोस्तों कि ये कौन सा फिल्म का ये गीत है। लेकिन इसमें काम किया है लीना चंद्रवर्कर और संजीव कुमार। गम का फसाना लेना, गम का फसाना लेना। तो आओ सुना जाए ये कौन सा गम है और कौन सा फसाना है। हमारे दोस्तों ये रोमांटिक मूवी का सॉन्ग है, क्लासिक सॉन्ग आप लोग को हम आज सुनाते हैं। आओ सुना जाए।
1: हाय गम का फसाना बन गया अच्छा
2: अच्छा जी
1: एक बहाना बन गया अच्छा
2: अच्छा

और गम का फसाना बन गया। अच्छा, किशोर जी का गाया हुआ ये सॉन्ग है। हमारे दोस्तों, हम अगला गीत की ओर बढ़ते हैं और अगला गीत क्या होगा, आओ मिलके सुनाएं गोरी तेरी गाँव बड़ा प्यारा। और कभी कभी जो गोरी लोन होता है वो गाँव में रहता है, देहात में रहते हैं, और ये गीत भी है गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा है। तो आओ सुना जाए इस गीत का। फिल्म का नाम है चित्त चोर नीघंती ससा सीवत का। ये गीत है, यूसुफ दास ने इस गीत को गाया है।

गोरी तेरा गांव ना सिर्फ तेरा गांव, तुम भी बहुत प्यारा है, तुम भी बहुत प्यारा है गोरी, जैसे तुम प्यारा है ऐसे तुम्हारा गांव भी प्यारा है। और इस फिल्म का नाम है चित्तचोर, जिसमें शरीना वहाप ने काम की है। और इसके बाद हम पुरानी गीतों की भान प्रोग्राम लेकर चलते हैं। सॉन्ग के नाम है दिल विल प्यार व्यार, अरे मैं क्या जानू भैया हम तो छोटा लड़का है। फिल्म के नाम है शागिर्द नहीं खती सीवन सस्तक का। और ये प्यार यार कुछ जाने भैया, अगर ये प्यार यार आपको मालूम है तो हमें आप लोग जरूर बतला देना, हमें भी मालूम नहीं है प्यार क्या होता है। तो आओ इस गीत से सुना जाए तो शायद मालूम हो जाएगा।

और ये दिल विल प्यार यार जॉनी के भी मालूम ना है दोस्तों, अगर आपको ये मालूम हो तो हमें जरूर बता देना कि ये दिल उल प्यार यार क्या होता है। अगर अगर आपकी दिल जो है जिसमें कुछ लिखा नहीं है, कोरा है, किसी आप के दिल में नहीं बसा है, तो ये गीत आपको सुनना चाहिए।

बैंड वाले भाई साहब एक मिनट, क्या है कि हमारी मीना यहाँ कहीं ऊपर रहती है, हमें उसका पता मालूम नहीं, आप थोड़ा बाजा बजाएंगे हैं, पैसे बाद में। 1 2 3 4

से प्यार तो देना चाहिए, नफरत दुनिया में बहुत कम करना चाहिए। दोस्तों मेरे ख्याल से नफरत नहीं करना चाहिए। काश ये जालिम जुदाई, काश ये जालिम जुदाई ना होती, काश ये जालिम जुदाई ना होती, ऐ खुदा तूने ये चीज बनाई नहीं होती। ना हम उसने ना हम उनसे मिलती, प्यार होता अपनी जिंदगी फिर पराया नहीं होती। तो दोस्तों हम चलते हैं एक देवर और भौजाई के गीत में। आप लोग जानते हैं देवर भौजाई जो है कभी कभी बहुत मजाक करते हैं, तो देवर और यानी कि देवर और भौजाई का गीत हम आप लोग को सुनाते हैं।

और जिसके लिए सबको छोड़ा और वो क्या किया, जिसके लिए दुनिया छोड़ा और उसने क्या क्या किया, मेरे दिल को तोड़ा। तो ये गीत है जो आपको हम सुनाते हैं। हमारे दोस्तों जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, और रेडियो फाउन के माध्यम से इस प्रोग्राम को हम लाइव प्रस्तुत करते हैं। और ये बारिश के मौसम है तो लोग सुनते हैं कि बारिश का सुहाना मौसम कुछ याद दिलाते हैं, बारिश का सुहाना मौसम कुछ याद दिलाती है, किसी के साथ होने का एहसास दिलाता है, फिजा भी सर्द है यादें भी ताजा है, ये मौसम किसी का प्यार दिल में जगाता है, दिल में जगाता है। हमारे यारो तुमको लेकर मेरी ख्याल नहीं बदलेगा, तुमको लेकर मेरा ख्याल नहीं बदलेगा, साल बदलेगा मगर दिल का हाल कभी नहीं बदलेगा। और दिल का हाल जो नहीं बदलेगा तो हम चलते हैं एक गीत के ओर जो आपको जरूर पसंद होगा, और वो है क्या भैया, दिल का रिश्ता। मूवी का नाम है दिल का रिश्ता। आओ सुना जाए ये प्यार भरी गीत क्या कहते हैं।

और दैया दैया रे रे रे रे दैया दैया के बाद दोस्तों हम और आगे को अपना गीतों की बहार प्रोग्राम लेकर चलते हैं और कहते हैं तुमको लेकर मेरा ख्याल नहीं बदलेंगे। अभी बताए ने दोस्तों कि साल बदल जाएंगे मगर दिल का हाल तो कभी बदलेगी नहीं। जख्म ही देना तो पूरा जिस्म तेरा हवाले था, जिस्म जख्म भी देना है, जख्म ही देना तो पूरा जिस्म तेरे हवाले था। भरम तूने वार किया वो भी दिल ही वार किया। तो उसके बाद हम चलते हैं आज फिरे दोस्तों, हमें जीने का तमन्ना हो गया है। नाइटिंगेल लता जी का सॉन्ग है और यानी कि रेडियो फाउन के माध्यम से इस प्रोग्राम को हम प्रस्तुत करते हैं। आओ सुना जाए।

आज फिर जीने का तमन्ना है, और जीने के बाद क्या होगा दोस्तों, प्यार होगा, और प्यार में तो कभी कभी टकराव भी तो हो जाते ना हमारे यारो, और होना भी चाहिए, यानी कि टकराव नहीं होगा तो कैसे जिंदगी चलेगा। फल एंड ऑब्स्टान दट होर्त नाम लेकिन और हम चलते हैं और आगे को कि कहते हैं रोज एक ताशा शेर कहां तक लिखूं तेरे लिए मेरी जान, रोज एक ताशा शेर कहां तक लिखूं तेरे लिए हमारी जान, तुझ में तो रोज ही एक नया बात हुआ करती है, अब रोज रोज नया बात होगा तो कितना शेर जोनी यहां से तुम्हारे लिए पढ़ेगा। तो ये बात है कुछ दर्द भरी गीतों की, प्रोग्राम भी हम चलाएंगे और कुछ गीत दर्द भरी शायरी भी आप लोग के लिए हम सुनाएंगे। तुमको लेकर मेरे ख्याल नहीं बदल देंगे, आप तो जानते हैं ना दोस्तों, और क्या होगा। तो हम चलते हैं और आगे कि कितना मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना, जैसे पानी से पानी पे पानी लिखना। तो हम चलते हैं प्यार से दिलबर, और धर्मेंद्र बबीता इस फिल्म में काम किया है, परमाश्री मोहम्मद रफी और आशा जी का गाया हुआ ये सॉन्ग है।

और प्यार से दिल भर दे, परमा श्री मोहम्मद रफी और आशा जी का गया हुआ ये जो है हमारे दोस्तों। और हम अपना प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं क्या, कहते हैं क्या दोस्तों, कहते हैं और क्या कहते हैं दोस्तों कि कितना मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखने में, बताए नहीं दोस्तों। आपके चेहरा जब देखूँ ना तो क्या क्या लिखने की और मंत करता है कि बहुत जुदा है औरों से मेरे दर्द की कहानी, बहुत जुदा है औरों से मेरी दर्द की कहानी, जख्म का कोई निशान नहीं और दर्द का कोई इतना नहीं। तो हम चलते हैं एक सॉन्ग की ओर और ये सॉन्ग है फिल्म पठान का ओर हम चलते हैं और फिल्म पठान का एक सॉन्ग आप लोग को हम सुनाते हैं।

और दोस्तों, और आप लोग को हम पठान, फिल्म पठान का ये गीत आप लोग को हमने सुनाया है। और हम चलते हैं और आगे कुछ पाती होगा, कुछ शेरी होगा। और यहाँ से हम कहते हैं, और क्या कहते हैं, कहते हैं प्यार की बात तो करना चाहिए, प्यार की बात तो करना चाहिए। और कहते हैं प्यार की बात तो सदा करना चाहिए, वो मुझसे बिछड़ जा तो जैसे बिछड़ गए जिंदगी, वो मुझसे बिछड़ा तो बिछड़ गए मेरी जिंदगी, मैं जिंदा हूँ पर जिंदा नहीं रहा। तो ये सब बात प्यार में लोग करते हैं, और क्या क्या करते हैं दोस्तों, बहुत कुछ करते हैं। बिखड़ा वजूद टूटे ख्वाब सुलगती तन्हाइयां, कितने हसीन तोहफे दिए जाती है ये मोहब्बत ने। तो कहते हैं आगे में, ऐसा नहीं है कि अब तेरे जुस्तजू नहीं रही, ऐसा नहीं है कि तेरे जुस्तजू नहीं रही, बस टूट कर बिखरने का आरज़ू नहीं रही। हम चलते हैं बेशरम, ये गीत का नाम है बेशरम। आप सुना जाए ये बेशरम क्या कहते हैं।

0: और फिल्म के नाम पठान है, जिसमें देविका और शाहरुख खान ने काम किया है। और बेशरम गीत हम आप लोग को, गीत के नाम है बेशरम दोस्तों, हम नहीं कहते हैं तो आप लोग को हमने चला दिया है। और जो गीत हम आप लोग को अब सुनाने जाते हैं वो है नैथिकेल लता जी उदित नारायण का ये सॉन्ग है, तू मेरे सामने और मैं तेरे सामने।
1: सामने तुझको देखूं कि प्यार करूं,

तेरे प्यार में क्या क्या होता है, अरिजीत सिंह, निकिता बच्चन, अमिताभ बच्चन इस फिल्म में काम किए हैं। और दोस्तों हम चलते हैं और अपना प्रोग्राम को लेकर आगे और कहते हैं जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का प्रोग्राम है सुनाना मेरा काम, बस सुनते जाओ इस दिल के दास्तां भी बड़ी अजीब होती है। इस दिल की दास्तां भी बड़ी अजीब होती है, बड़ी मुश्किल से इस खुशी नसीब होती है, किसी के पास आने पर खुशी हो ना हो, पर दूर जाने पर बड़ी तकलीफ होती है ना यारो, दूर जाने से बड़ी तकलीफ होता है, ये हम नहीं कहता है, ये दिल के आवाज कहते हैं कि अब जिसके जिए में आई वही प्यार रोशनी, अब जिसके ये मन आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सारे आम रख दिया है। और चलते हैं मोहब्बत इनायत कर्म देखती है, और फिल्म के नाम है बहारे आने तक, अनुराधा पौलवार और पंकज उदास क्या कहते हैं।

मोहब्बतें इनायत करम देखते हैं। आओ जा आप लोग जानते हैं प्यार भरी गीतों की बहार प्रोग्राम जोनी नंबर वन का है और कहते हैं फिर वही दिल की गुजारिश फिर वही उनका गुरूर फिर वही उनकी शरारत फिर वही मेरी कसूर दोस्तों कि तेरी खामोशी चला देती है इस दिल की तमन्नाओं को तेरी खामोशी जला देती है इस दिल की तमन्नाओं को बाकी सारी बातें अच्छी हैं तेरे तस्वीर में। हम चलते हैं मेरे सवाल का जैजाना और का ये गीत है आओ मिलकर सुना जाए।

मशहूर दोस्तों, यहाँ से मेरे सवाल का एक गीत हमने आप सबको सुनाए हैं, प्यार भरी गीतों की। और बाहर प्रोग्राम हमारा यहाँ से चलते है और आगे को तो प्यार भरी बातें तो करना हमारा ही काम है यारो, कि काश उसे चाहने के अरमान न होता, काश उसे चाहने की अरमान नहीं होता, मैं होश में रहती हुए अंजाम नहीं होता, ना प्यार होता किसी पत्थर दिल से हमको, या फिर कोई पत्थर दिल इंसान ना होता। दोस्तों नखकीर वसमोए, काश उसने चाहने का अरमान ना होता, काश उसे चाहने का अरमान न होता, मैं होश में रहती हुए अनजान न होता, न प्यार होता किसी पत्थर दिल से हमको, या फिर कोई पत्थर दिल इंसान न होता। तो हम चलते हैं, मिले तुमसे बिछड़ के हम मेरी साजन, और फिल्म के नाम है सलामी अलकायंगनी कुमार शानू।

और मिले तुमसे बिछड़ने के और मेरे साजन दुआ करना। अलका याग्निक का ये गाया हुआ सॉन्ग है कि दोस्तों कि अगर मैं भी मिजाई से पत्थर होता, अगर मैं भी मिजाई से पत्थर होता तो खुदा होता तो तेरे दिल होता। बहुत आसान है पहचान इसकी, अगर दुखता नहीं है तो दिल नहीं है, अगर दुखता नहीं है तो दिल नहीं है। ये तो सच बात है दोस्तों, अगर दिल है तो दिल टूटता भी है, और अगर दिल है तो दिल रोता भी है, और अगर दिल है तो दिल प्यार भी करता है। मुझे रिश्तों के लम्हे कटारों से क्या मतलब, मुझे रिश्तों की लंबी कतारों से क्या मतलब। और कोई दिल से हो मेरे तो एक शख्स की काफी है। तो हम चलते हैं कि रब्बा क्या जानते हैं, रब्बा तो सब कुछ जानते हैं। और आओ सुना जाए कि यहां पर मिशन मजनू क्या कहते हैं।

ओ सनम और ओ सनम दोस्तों, और ओ सनम में क्या क्या होता है आप लोग भी जानते हैं कि कभी कभी नहीं कभी कभी बहुत ज्यादा हो चुका है जो लोग प्यार में धोखा देते हैं। दिस प्रोग्राम भैया, इस प्रोग्राम जो है ये सिर्फ लवर्स के लिए है और प्यार भरी गीतों के बाहर प्रोग्राम हमारा है, और उसमें कभी कभी लोग धोखा भी दे देते हैं, बेवफाई भी करते हैं, तो हम भी उस लोग को याद करते हैं जो दिल तोड़ दिया है या तोड़ते हैं, और जो सोचते हैं दिल तोड़ने को कि तेरे ख्याल से दिल से मिटाया नहीं अभी, बेवफा मैंने तुझको बुलाया नहीं अभी, हमसे ना करिए बातें यू बेरुखी से सनम, हमसे ना करिए बातें यू बेरुखी से सनम, होने लगे हो कुछ कुछ बेवफा से तुम, हम चलते हैं तेरे नाम धोखा रख दुन नाराज हो गए हो क्या, तेरा नाम धोखा रख दू नाराज हो गए है क्या। अरिजीत सिंह की ओर है।

कौन-कौन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे आमदनी के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। आमदनी के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतोने के लिए तार कीजिए 9753523 तक सेफ नफेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

जो लोग चून किए मीटर पर, आप सबका हृदय से स्वागत है। चलिए आप सबका स्वागत करते हुए हम पेश कर रहे हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

आई शुरू मेरा वतन जापान लता जी आपको सुनाए हैं और कार्यक्रम में हमने चलाए हैं। आप सबका स्वागत है जो लोग चून की मीटर पर। चलिए आपका स्वागत करते हुए हम आपको सुना रहे हैं ये गीत इस तरह से, बस ध्यान दे के सुनिए।

कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार। मैं थी मुकेश द हार्टथ्रब ऑफ मिलियंस, आपको सुनाइए ये शानदार गीत, जबकि आप भी सुन रहे हैं और मैं भी चला रहा हूँ। आप सबका हृदय से स्वागत है। आप सबका स्वागत करते हुए तो सुनिए, मैं आपको ये सुना रहा हूँ इस तरह से। लता जी है, जी हाँ लता जी है, फिक्टोरिया 2003।

थोड़ा सा ठहरो लता जी की आवाज़ में पेश किया गया फौन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, क्या ख्याल है अगर साथ साथ चलने के वादा की जाए तो इस तरह से।

न थो छोड़ेंगे दामन तुम्हारा वहाँ तक। ये शानदार गीत चला हमने पेश की रवि साहब आशा जी की आवाज़ में, और उम्मीद है आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ख्याल है, प्रेम प्यार मोहब्बत में तो लोग बहुत वादे करते हैं लेकिन कभी निपता है कभी नहीं। लेकिन चलिए सुनते हैं कि एवरग्रीन किशोर कुमार, एवरग्रीन किशोर कुमार क्या कह रहा है इसके बारे में।

शायद होगा जो, शायद कोई होगा जो ये फिल्म नहीं देखे हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि 95% लोग ये फिल्म अवश्य देखे होंगे। गीत में तो आपने नाम सुने, जूली, जूली फिल्म है का नाम है, राजेश रोशन के साज पर फिल्म जूली में से निकाले हैं, एवरग्रीन किशोर कुमार की आवाज़ में हम आपको सुनाए हैं। चलिए कार्यक्रम बढ़ाते हुए, तो क्या ख्याल है अगर आपको ये गीत सुनाऊं, इसे सुनिए, क्योंकि ये गीत बहुत नहीं चलता है और ये गायक का गीत बहुत भी नहीं चलता है, लेकिन आप तो आज तो हम आपको अवश्य सुनाएंगे, बस अंदाज़ा लगाइए आवाज़ किसकी है।

जी हाँ, आशा जी, आशा जी के साथ कौन था आप अंदाज़ा लगाए होंगे, सुबीर सेन। जी हाँ, सुबीर सेन की आवाज़ में ये गीत था। आशा जी के साथ एस महेंद्र के साज पर हमने पेश की फौन हिंदुस्तानी रेडियो के शाम के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, और वो है क्या ख्याल है, माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस।

मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए ये शानदार गीत और हमने पेश की बस फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में जब भी जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। तो अगर आप भी हैं मैं भी हूँ तो क्या ख्याल है अगर ये चलाया जाए

बस शारदा जी, बहुत देर ना समुचिए वरना पासा पलट ना जाए कहीं। बहरहाल फिर भी आपको सुनाएं शारदा जी के साथ ये शानदार गीत हम पेश किए। तो अगला गीत, ये गीत भी बहुत दिन हुए होंगे शायद आपने नहीं सुने, तो चलिए हम आपको सुनाते हैं। कार्यक्रम में यशुदास।

फिल्म चितचोर में से निकाले हैं येसुदास जी, येसुदास जी आपको सुनाए हैं ये कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है रफ़ी साहेब और सुमन कल्याणपुर जी। हाँ, रफ़ी साहेब और सुमन कल्याणपुर, बस क्या ख्याल है। फिल्म फिल्म फिल्म फिल्म चांद और सूरज, चांद और सूरज में से सलील चौधरी के साज पर।

रफी साहब और सुमन कल्याणपुर, ये दोनों मिल के आपको ये शानदार द्विवेद सुनाए हैं। चलिए घड़ी पर देखो जी, हाँ अभी थोड़ी समय बाकी है, तो हम पेश करते हैं ये गीत भी बहुत दिन हुए होंगे शायद आपने नहीं सुने, अगर हालिम सुने होंगे तो एक बार सुन लीजिएगा, एवरग्रीन किशोर कुमार।

तो आपने तो सुन ही चुके हैं कि प्यार की कभी कोई हार नहीं होती है। एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए ये कार्यक्रम में थे। चलिए आपका स्वागत करते हुए हम पेश कर रहे हैं एक गीत आयशा जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में, फिल्म हरे कांच की चूड़ियाँ में से निकाल कर हम ये गीत आपको सुना रहे हैं। और देखा जाए हाँ, ये फिल्म में विश्वजीत ने काम किया है और नैना शाहू किशोर शाहू की सुपुत्री यानी बेटी है। तो आप ये सोचोगे ये नैना शाहू कौन है और किशोर शाहू कौन है। किशोर शाहू प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, लेकिन किशोर शाहू ने फिल्म गाइड में वो पति का रोल किया है वहीदा रहमान का। वहीदा रहमान ने पति का रोल जो किया है किशोर शाहू, वही किशोर शाहू उनकी बेटी है ये। तो चलिए गीत हम आपको सुनाते हैं इस तरह से।

0: पंछी रे वो पंछी, रफ़ी साहब और आशा जी आपको सुनाए हैं और फिल्म हरे कांच की चूड़ियाँ में से निकाल कर हमने चलाए हैं। म्यूजिक डायरेक्टर तो नहीं लिखा है लेकिन साज से पता चलता है कि शंकर जयकिशन के साज पर हम ये गीत आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत, तो क्या ख्याल है, ये धमाकेदार ये है।
1: घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए
0: क्या
1: थोड़ी

क्या बात है, ये शानदार प्यारा दुएत हम आपको सुनाए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं मैं चला रहा हूँ। आप सबका स्वागत करते हुए प्लेन में हमने गीत रखे हैं। कहाँ गया? जी हाँ, कहाँ गया? हाँ, ये मिल गया। चलिए देखते हैं, माइत मुकेश, माइत मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, सोनिक ओमी के साज पर फिल्म बेटी में से निकाला है इस तरह से।

0: ये क्या किया रे दुनिया वाले फिल्म में से हम निकाले 1969 का ये फिल्म है और हमने पेश की वो फरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत, जी हाँ, सोनी कोमी के साज पर फिल्म ब्यूटी में से निकाले हैं। अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, चलो प्रेम पुजारी की ओर बढ़ते हैं। प्रेम पुजारी में देवानंद का कास्ट है और वहीदा रहमान। तो ये प्यारा गीत हम आपको सुना दें, बहुत ज़बरदस्त गीत है। कौन संग्रेस ये गीत नहीं गाए हैं इस तरह से।
1: डाउनलोड करिए ओरिजिनल हाई क्वालिटी सॉन्ग्स सारेगामा.com से।

जी लता जी, आपको सुनाए रंगीला रे फिल्म प्रेम पुजारी में से हमने ये गीत निकाले हैं। आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर आपका स्वागत करते हुए चलिए हम आपको ये गीत सुनाते हैं। हाँ, फिल्म वो दिन याद करो, फिल्म वो दिन याद करो में से निकाल रहे हैं द मैन विद गोल्डन वॉइस और लता जी।

मोहब्बत की कहानियाँ सुनाने लगे है जवानियाँ। ये शानदार गीत हमने पेश किए ओवर फाहौन हिंदुस्तानी रेडियो। आप चुने फाहौन हिंदुस्तानी रेडियो पर, जो लोग चुन की मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए मैं चला रहा हूँ, आपको चला भी नहीं रहा सुना भी रहा हूँ, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर फिल्म अनीता में से निकाल कर। ये एक डरावनी फिल्म थी, लेकिन इतना डरावनी नहीं थी, बहरहाल थोड़ी बहुत डरावनी थी। फिल्म अनीता में से निकाल कर लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज।

ना बाबा ना बाबा पिछवारे बुढ़ा खांसता लता जी आपको सुनाए लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर फिल्म अनीता, फिल्म अनीता में से निकाल कर हमने चलाए हैं। और अनीता जी के बाद, नहीं फिल्म अनीता जी के बाद चलो हम सुनाते हैं आपको ये गीत।

लता जी और एवरग्रीन किशोर कुमार, सुनाया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा हमने पेश की। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं। जी हाँ, क्या ख्याल है, इस तरह से आ रहा है रवि साहब की आवाज़ में जाना पहचाना गीत, जानी पहचानी आवाज़, जानी पहचानी संगीत है।

वाह क्या बात है, ये छेड़खानी वाली गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलते हैं, मैथिली मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आशा जी के साथ एक बार मुस्कुरा दो निख दी तुम सी में। तो 1972 का ये फिल्म, जहाँ तक मेरा ख्याल है इस फिल्म का म्यूजिक दिया गया है ओपन नैयर के जरिए। जरा देखो तो सही है, जी हाँ सही है।

दिल भर जाने दिल तोड़ तोड़, आशा जियो, माई तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस फिल्म एक बार मुस्कुरा दो में से निकाल कर नहीं तुम सैफ तक 1972 का ये गीत हमने पेश किया ओपी के साज पर। अगर ओपी ही से हम चल रहे हैं तो लीजिए एक बार फिर ओपी नैयर के साज पर इस बार आशा जी ये धमाकेदार गीत फिल्म होंगकोंग।

नई गिनती सस्त 1962 फिल्म हांगकांग में से निकाले हैं और ये गीत चला ओपन एयर के साज पर हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलो देखते हैं प्लेयर में हमने ये गीत रखे हैं तो क्या ख्याल है। इस तरह से मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस।

लता जी और माई टू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। जी हाँ, तो अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, तो क्या ख्याल है अगर मैं आपको ये गीत सुनाऊं? गंवार में से निकाल रहे हैं आशा जी और रफी साहब।

फिल्म गंवार में से निकाले हमने नौशाद अली की साज पर, और रफ़ी साहब और आशा जी आपको सुनाई ये शानदार गीत ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप चून हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, तो क्या ख्याल है अगर ये पेश करूं, बस धमाकेदार गीत है।

एक बेचारा प्यार कमारा, रफ़ी साहब की आवाज़ में हम आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत क्या ख्याल है? जी हाँ, मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ अ मिलियंस, कंचन जी के साथ फिल्म धर्मात्मा में से है।

तुमने किसी से कभी प्यार किया है, ये शानदार गीत चला। जी हाँ, ये शानदार गीत चला ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। जी हाँ, तो चलिए कार्यक्रम में हम आगे कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। और क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ इस तरह से,

0: दुनिया में हमारा दिल होते है, ये शानदार गीत हम निकारे फिल्म दिल ही तो है में से शंकर जय किशन के साज पर पेश हुआ ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। जबकि लीजिए लता जी एक बार फिर है, जी हाँ, पंडित रविशंकर के त्रिब्यूट के लिए निगित शस्त्र का ये फिल्म है।
1: ये ऑल इंडिया रेडियो बम्बई है। अब हम आपको कुछ पुराने गानों के रिकॉर्ड सुनाएंगे। आज से 10 साल पहले इन गानों ने धूम मचा दी थी। पहले सुनिए सांवरे सांवरे, गायिका अनुराधा राय।
0: जिसे के पंडित रविशंकर वो मशहूर सितारे थे। लता जी की आवाज में

ये साज कवि पंडित रविशंकर जी ने स्टेज पर बजाया था और इसी साज से उन्होंने ओपनिंग की यानी शुरू की। तो ये धुन को म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन ने इसमें जान डाल दी और इसे लता जी से ये धुन गवाया शब्दों के साथ। और हमने पेश की वो परफॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत पेश करने वाले आशा जी उर्फी साहब जी, हाँ फिल्म जिद्दी में से निकाले हैं।

आशा जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में फिल्म ज़िद्दी में से निकाले हैं ये गीत और हमने पेश की आपके लिए। चलिए अगला गीत चलाने वाले हैं, क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये सुनाऊँ, लता जी और मन्ना दे जी। जी हाँ, लता जी और मन्ना दे जी मिल के आपको सुनाएंगे ये शानदार गीत। और देखते हैं तो इसे मैं निकाल रहा हूँ फिल्म रात और दिन में से, शंकर जयकिशन के साज पर, बस इस तरह से।

लता जी और मन्ना दे जी फिल्म रातों दिन में से निकाले हैं और शंकर जय किशन के साज पर हमने पेश की है। लीजिए एवरग्रीन किशोर कुमार अपने प्यार की इजहार कर रहा है और आगे इन्हीं से सुनिए एवरग्रीन किशोर कुमार।

तुम कितनी खूबसूरत हो, क्यों दिल तुम पे है इतना दीवाना। एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए फिल्म जंगल में मंगल में से निकाल कर ये गीत हमने पेश की। तो लीजिए अगला गीत हम चल आपको सुनाने वाले हैं। क्या ख्याल है ये, इस तरह से फिल्म आओ प्यार करें।

लता जी की इस गाने पर मुझे कुछ नहीं कहना है। जी हाँ, मैं कुछ नहीं कहूँगा और चलाऊँगा ये गीत। फिल्म ये रात फिर ना आएगी, निकली शस्त्र 1966 का ये गीत। जी हाँ, सुनिए महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में।

मेरा प्यार वो है महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में अपनी सभी इच्छाएँ उन्होंने रख दी। फिल्म का नाम है ये रात फिर ना आएगी नीगती सशस्त 1966 का ये गीत ओपी नैयर के साज पर हमने पेश किए। लीजिए प्लेयर में एक गीत हमने और रखे है मैथी मुकेश जी का, पता नहीं बहुत दिन हुए होंगे आप ये गीत शायद सुने हैं, मैं भी बहुत दिनों बाद ये गीत चला रहा हूँ, ये भी हो सकता है आपने हाल ही में सुने होंगे, तो मेरा बदनसीबी है, वरना लीजिए मैथी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुना रहा है।

माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस अगर सैड सॉन्ग हो तो मुकेश जी तो गम का दरिया है, और ये गीत हम आपको सुनाएं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। फिल्म अप्रैल फुल में से नहीं थी फिर से 1964 का ये गीत लचा दी शंकर जयकिशन के साथ।

ट्यून है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर। तो चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, अब वो ये है, कभी कभी आप कहीं जलसे में जाते हैं यानी नेवता में जाते हैं, कोई धीरे धीरे बात कर रहा हो, को शुशु शुशु बात करता है यानी छुपके छुपा के, तो इसके बारे में भी बॉलीवुड ने एक गीत बनाए हैं। चलिए वही गीत हम आपको सुनाते हैं, आशा जी आपको सुना रही है कि लोग कभी कभी शुशु शुशु करते हैं, छोटी छोटी बातें करते हैं, कानों में बात करते हैं, खुल के बात नहीं करते हैं, जिसे कहते हैं काना फुसकी।

0: 叔叔。
1: 叔叔。

धीरे धीरे बोलो जी, नाचते नाचते आप शायद थक गए होंगे। जी हाँ, मुमकिन है थक गए होंगे, तो लीजिए मैं आपको थोड़ी देर आराम देता हूँ।

हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर ये गीत पेश हुआ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। हमने पेश की मैथिली मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी फिल्म एक बेचारा में से निकाल कर निकली त्वीन सैफ तक का ये गीत। चलिए अगला गीत है और वो गीत है नतीजा हमारी मैथिली मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। क्या ख्याल है?

ये तुम भी ना सोचो, ये हम भी ना सोचे, मैथ मुकेश और आशा जी मिलके आपको गीत ये सुनाए ओ फरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, तो क्या ख्याल है अगर मैं आपको ये सुनाऊँ, इस तरह से आ रहा है।